मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि तदनुसार 28 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका। आप सभी को ईद उल जुहा की हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देशगान। वंदना में आइए अब आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडकर का गाया ये भक्ति गीत।

उषा अमोनकर के स्वर में अगला भक्ति गीत सुनने से पहले हम आपको बता दें कि अभी जो भक्ति गीत आपने सुना उसे गाया था उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं उषा अमोनकर का गाया ये भक्ति गीत।

0: अनूप जलोटा और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। ईद उल जुहा पर ये विशेष चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं जनाब सगीर अहमद अंसारी।
1: इस्लाम के पांच बुनियादी रुकन हैं कलमा, नमाज, रोज़ा, जक़ात और हज। इनमें से हर एक पर ईमान लाना और अमल करना हर मुसलमान का मजहबी फरीज़ा है। ईद उज़ुहा के त्यौहार का ताल्लुक इसी हज के पांचवें फरीजे से है। ईद उज़ुहा का त्यौहार फरीज़ा हज की अदायगी की खुशी में इस तरह मनाया जाता है कि जिसमें शहर और बस्ती के गरीबों, मोहताजों और मजबूर व बेकस लोगों को भी शामिल करना ज़रूरी करार दिया गया है। हज तो अरब के शहर मक्का में अदा किया जाता है और वहाँ हज अदा करने के लिए जाने वालों की तादाद ही बस लाखों में ही होती है, लेकिन ईद मनाने वाले हर मुल्क, हर शहर और हर बस्ती में मौजूद रहते हैं। जिस तरह पैगंबर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिन्होंने शहर मक्का में काबे की बुनियाद रखी थी और हर साल वहाँ जाकर अपने बेटे हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह, जिनको उन्होंने अल्लाह की राह में क़ुरबान करने की कोशिश की थी और जिनकी जगह अल्लाह ने एक दुम्बे को उनकी छुरी के नीचे ज़बह करा दिया था, के साथ हज किया करते थे। ये वही इब्राहिम खलीलुल्लाह थे जो कभी तन्हा खाना नहीं खाते थे जब तक के उनके दस्तरखान पर कोई मुसाफिर, कोई राहगीर, कोई गरीब और लाचार शामिल न होता हो। ठीक इसी तरह ईद उज़ुहा के मौके पर जो क़ुरबानी की जाती है उसके गोश्त में एक तिहाई हिस्सा उन गरीबों और मोहताजों को देना ज़रूरी होता है जिनको साल भर कभी गोश्त खाने को नहीं मिलता या बहुत कम मिल पाता है। इसी तरह क़ुरबानी के जानवर की खाल भी उन्हीं गरीबों और मोहताजों का हक़ होती है। काबिल गौर बात यह है कि गरीब और मोहताज सिर्फ मुसलमानों ही में नहीं होते बल्कि हर कौम और हर मज़हब में होते हैं, और इस्लाम में पड़ोसी का बड़ा हक माना गया है। ये पड़ोस एक दो घरों का नाम नहीं है बल्कि पड़ोस की तारीफ इस्लामी शरीयत में 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे और 40 घर पीछे बताई गई है। इतने बड़े पड़ोसी में कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही बसते हों। जिस ज़माने में पड़ोस का यह कानून बना था हर जगह मिली जुली आबादी होती थी, और आज भी बहुत से मुल्कों और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में हर जगह मिली जुली बस्ती होती है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, गरीब, अमीर, मोहताज और बेवाएँ, बेसहारा लोग ज़रूर होते हैं। तो ईद उज़ुहा के मौके पर अपने इन पड़ोसियों को खाने पीने की चीज़ों और नकद जिंस के ज़रिए मदद मुहैया करके आपसी भाईचारे और कौमी एकता के जज्बात पैदा करना होता है। अगर हर वो मालदार शख्स जो साहिब निसाब और साहिब ज़कात है क़ुरबानी करने लगे और सदका, फितरा, ज़कात वगैरह गरीबों और बेसहारा लोगों को पहुंचाता रहे तो आस पड़ोस में कोई गरीब न रहे और सबकी परेशानियां दूर हो जाएं और कौमी एकता का माहौल चारों तरफ पैदा होकर अमन और शांति के गीत गाए जाने लगे। दरअसल इस्लामी त्यौहारों में ईद उल फितर और ईद उज़ुहा ये दो ऐसे त्यौहार हैं जिनमें गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी करार दिया गया है, और त्यौहार की खुशी में सबको शामिल करके और सबको गले लगाकर अपनेपन का एहसास दिलाना इन दोनों त्यौहारों की रूह बताया गया है। यही नहीं कि ईद के मौके पर सिर्फ मुसलमान ही गैर मुस्लिमों की दिलजोई करते हों बल्कि हिंदू और मुसलमान भाई भी, हिंदू और सिख भाई भी ईद मिलन के प्रोग्राम मुनक़द करके अपने मुसलमान भाइयों से गले मिलते और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आगरा शहर में मैंने देखा कि जामे मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए सड़कों पर हिंदू दुकानदार ही चादरें बिछाकर ईद की नमाज का इंतज़ाम करते हैं। इस तरह से कौमी एकता की एक बेहतरीन मिसाल कायम होती है।
0: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे जनाब सगीर अहमद अंसारी का ये चिंतन जो ईद उल जुहा पर विशेष तौर पर हमने आपको सुनवाया। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपने अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है पशुओं में सामयिक कार्य। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पीपीएस चौहान।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज के मैं आपसे पशुपालन से संबंधित कुछ समसामयिक जानकारी देना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मई का महीना ये चल रहा है। मई के महीने में अपने को क्या क्या पशुपालन में प्रबंधन, एक तो ये करना चाहिए कि जो पशुशाला या जो बाड़े हैं, आजकल गर्म हवाएं या लू चलने लगी हैं, उनको क्या है कि खिड़की दरवाजे वगैरह जितने भी उनको टाट की बोरियों से अपन कवर करके रखें, जिससे कि लू से होने वाले हानिकारक प्रभाव से उनको बचाया जा सके। दूसरा क्या होता है कि गर्मियों में पशु पर गर्मी के कारण काफ़ी ज़्यादा तनाव रहता है और वह तनाव और दुगना हो जाता है जब उसको हरा चारा गर्मी के समय में नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या है कि वैसे तो किसान भाई कुछ करते ही हैं। जायद के समय में उन्होंने कुछ ने एमपी चरी लगाई है और मुरैना ज़िले में हमने कुछ किसानों को प्रयोग भी करवाया कि एमपी चरी और काउपी मिला के अपना हरा चारा उत्पादन कर उसको खिलाएं। तो हरे चारे की लगभग 10 से 15 किलोग्राम हरे चारे की समुचित व्यवस्था पशुओं के लिए करें ताकि उनका तनाव काफ़ी कुछ हद तक कम किया जा सके और दूध उत्पादन में जो गिरावट है वो कम की जा सके। इसके अलावा क्या है कि पशुओं में हमने देखा है कि आजकल ज़्यादातर जानवरों में प्रजनन संबंधी समस्याएं और विशेषकर गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इसके लिए क्या है कि अपने को पशुओं के आहार में विटामिन्स और खनिज लवण की मिश्रण की कमी की पूर्ति करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है, बाज़ार में विटामिन और खनिज लवण मिश्रण के पैकेट वेटनरी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं, वहाँ से अपन कोई भी पैकेट ले लें जो अपने बजट में आए और उस पैकेट से 40 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से मिनरल मिक्सचर पशु के आहार में मिलाएँ, जिससे कि वह आसानी से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी कर सके। अब 40 ग्राम किसान भाई कैसे नापेंगे, अगर नाप सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी नाप सकते हैं तो एक माचिस की डिब्बी भर के पशु के दाने में अगर अपन ने मिला दिया तो वह 40 ग्राम के आसपास हो जाता है। दूसरा क्या है कि पशुओं में आप लोग जानते हैं कि बरसात से पहले टीकाकरण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है, तो वो टीकाकरण के प्रति भी अपन सजग हो जाएं और टीकाकरण पशुओं में करवाने की व्यवस्था करें। देखिए, खुरपका मुँहपका रोग पहले बरसात के पहले टीकाकरण करवाया जाता है, लेकिन आज के समय में इसके होने में परिवर्तन आ गया है और आजकल यह रोग अपना सर्दियों में ज़्यादा होने लगा। लेकिन फिर भी जिनने ना कराया हो तो इसका टीकाकरण 6-6 महीने के अंतराल पर, अगर वो 6 महीने अभी पूरे हों तो करवा लें। इसके अलावा गलगोंटू या हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया या बीमारी जो पशुओं में होती है उसके लिए भी टीकाकरण अपन अभी करवा लें। इसके अलावा एंटेरोटॉक्सीमिया, ब्लैक क्वार्टर आदि अन्य बीमारियाँ भी जो पशुओं में होती हैं उनका टीकाकरण भी अपन अभी करवा सकते हैं। दूसरा क्या है कि हरा चाला मैंने पहले भी बता दिया। दूसरा क्या है कि दाने का प्रबंधन में अगर अपन देखें तो पशुओं को दाने के लिए शरीर के अनुसार दाना दें, जैसे शरीर मेंटेनेंस के लिए सामान्यतः पशुओं को 2 किलोग्राम दाना, 1.5 से 2 किलोग्राम, और दूध उत्पादन के लिए भैंसों में प्रति 2 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना और देसी गाय में प्रति 3-3.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना अतिरिक्त दें। इसके अलावा गर्भावस्था में अगर जो पशु हैं उनको गर्भावस्था के 8वें महीने से गाय भैंस दोनों में प्रतिदिन 1.25 किलो से लेके 1 किलो दाना अतिरिक्त सप्लीमेंट करें दाने में, जिससे कि उनको जो बच्चे का विकास है वो ठीक से हो सके। इसके अलावा पशुओं में कीड़े मारने की दवाई या डिवर्मिंग की प्रक्रिया भी निश्चित रूप से करें, क्योंकि हमारे पशुओं के पेट में कीड़े पटेरा वगैरह रहते हैं। गर्मियों में तो खैर जुएँ किलनी वगैरह भी चमड़ी पे हो जाते हैं पशुओं में, अतः उसको लिए भी बाह्य परजीवी नाशी जो रसायन आते हैं, जो दवाइयाँ आती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, और अपना जो पेट में अंदर कीड़े हैं उनको मारने के लिए कई दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, उन दवाइयों को लेके पशु के वजन के अनुसार उसको खिलाएं और टीकाकरण जरूर डिवर्मिंग की प्रक्रिया जरूर कराएं, क्योंकि डिवर्मिंग की प्रक्रिया साल में 6-6 महीने के अंतराल पर बड़े पशुओं में 2 बार जरूर करानी चाहिए।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी डॉक्टर पीपीएस चौहान जानकारी दे रहे थे पशुओं में सामयिक कार्य के विषय में। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर,
6: 870-001-4242।
7: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे।
8: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 150वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन संबद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं

0: द्वितीयं राज्यम् अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्माननं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोयम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीये सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्त मासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतनपरम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट् क्रीडायां, IPL क्रिकेट् स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को

0: श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:20 पर आप सुनेंगे रश्मि शर्मा सभा से उनका काव्य पाठ। 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकता है।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करते हैं। इसके ठीक बाद गुरुवार के दिन 8:30 आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाता है। 9 बजे सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम होता है गुड मॉर्निंग ग्वालियर, और इसके ठीक बाद यानी 9:30 आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवाएंगे पारुल दीक्षित का गाया राग अलहिया बिलावल।

सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी भोपाल से अनुप्रसारित होती है। 10:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

श्रोताओं, आज गुरुवार है। आज हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे से। इसमें दिल्ली से अनुप्रसारित विशेष कार्यक्रम 4 बजे से 5 बजे तक सुना जा सकेगा, संदेश टू सोल्जर्स। 5 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। सभा के आरंभ में 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी और 6 बजे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम होगा उमंग। हमारे केंद्र से 7:20 पर चौपाल कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसमें चर्चा होगी प्रधानमंत्री जनधन योजना पर। इसके अलावा स्वरोजगार अपनाएं, लघु उद्योग लगाएं, इस विषय पर भी चर्चा होगी। डॉक्टर सुधीर कुमार द्विवेदी से सोहन सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी, जिसका विषय होगा मिट्टी परीक्षण क्यों और कैसे। कार्यक्रम चौपाल के बाद 8 बजे से लेकर सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं प्रगति बैठक में राज्यों को स्वच्छता, सोलर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बकरीद पर देशवासियों को बधाई दी। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में पढ़ने की अपील की। त्रिशा शर्मा मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की। और आईपीएल एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक ना रहे बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों में भी तेजी लाए। छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बिजली सस्ती होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बल मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा

0: की यह त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने लोगों से सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना पढ़ने की अपील की है। बोर्ड का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही पढ़ी जाए। इसके अलावा कुर्बानी भी तय जगहों पर हो और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न शेयर करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले एक दशक में राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना और ईपीओएस मशीनों जैसे कई अहम सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। यह नई योजना उस कड़ी को और आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। चर्चा का जलवायु के अनुकूल खेती, दलहन तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर जोर रहेगा। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए राहत देना उचित नहीं था। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जाँच नहीं की। अब सीबीआई गिरिबाला सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं ट्विशा के पति समर सिंह पहले से 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर है। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करते हैं। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार कल पन्ना जिले के बहिरपुरवा गांव पहुंचे और कुआं धसकने से जान गंवाने वाले 5 मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोक में डूबे परिवारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि ये मजदूर अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे और यह हादसा बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवारों को दिलाया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। सांची स्तूप में रखे भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। आज ये अवशेष भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे, जहां 29 मई को राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। वहां की राजधानी उलान बतौर में 31 मई से आम लोगों के दर्शन के लिए अवशेषों को रखा जाएगा। यहां करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना दिया है। अब कलेक्टर से लेकर पटवारी तक हर स्तर पर कोई न कोई अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। शहरी इलाकों में नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी यह जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में प्रदेश में बाल विवाह के 538 मामले दर्ज किए गए थे। प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारी है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कल समीक्षा बैठक में बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5,000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के अधिकार हेतु देगी।

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने सभी विभागों को 7 दिन में पौधारोपण की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों, पंचक्रोशी मार्ग और शिप्रा नदी के नए घाटों के किनारे अमलताज, गुलमोहर और पलाश जैसे गर्मियों में खिलने वाले फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आईपीएल एनिमेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। मैच के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं आज राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा और जीतने वाली टीम रविवार को अहमदाबाद में RCB से फाइनल खेलेगी। अब बात मौसम की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं, आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। कल दोनों जगहों पर पारा 46.6 डिग्री रहा। आज यहां तीव्र लू का रेड अलर्ट है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल से 31 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से एक महिला और 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। रतलाम जिले के आलोट के पास चलती कार में अचानक आग लग जाने से एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि चालक और एक अन्य सवार ने कूदकर जान बचाई। खंडवा जिला चिकित्सालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देवास की शाही ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी ने समाज से कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की है। खरगोन जिला सहकारी बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख से अधिक के गबन पर 3 कर्मचारी निलंबित। शिवपुरी कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों और कारखानों में बाल श्रम रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरमालवा में पेयजल और हैंडपंप शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू। कट्टी में प्रेमनगर बस्ती के आवासों पर बने 8 अनधिकृत कब्जे जिला प्रशासन ने हटाए। राजगढ़ में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित और शहडोल में साल खरीफ धान बोनी का लक्ष्य 3,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,50,000 हेक्टेयर किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं रश्मि शर्मा सभा से उनके कलाम।
1: नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं एक नज्म लेकर। नज्म का उन्वान है मैं जाना चाहती हूं वहां, मैं जाना चाहती हूं वहां तुम्हारे साथ, मैं जाना चाहती हूं वहां तुम्हारे साथ, जहां तुम नहीं गए पहले कभी, जहां तुम नहीं गए पहले कभी, जहां नहीं गए तुम मेरे साथ, किसी के साथ, अपने साथ भी नहीं, जहां नहीं गए तुम मेरे साथ, किसी के साथ, अपने साथ भी नहीं, जाना चाहती हूं वहां जहां नहीं पहुंची पुरानी कोई याद, कोई उम्मीद, कोई निगाह, कुछ भी नहीं, जाना चाहती हूँ वहाँ जहाँ नहीं पहुँची पुरानी कोई याद, कोई उम्मीद, कोई निगाह, कुछ भी नहीं, देखना चाहती हूँ तुम्हारी आँखों में, देखना चाहती हूँ तुम्हारी आँखों में नई राह, नए मंजरों की हैरानी, मासूम बच्चों सी खुशी रक्स करती हुई तुम्हारे चेहरे पर, मासूम बच्चों सी खुशी रक्स करती हुई तुम्हारे चेहरे पर, महसूस करना चाहती हूँ नए मौसमों के लम्स को, महसूस करना चाहती हूँ नए मौसमों के लम्स को, कितनी अजीब हूँ मैं, कितनी अजीब हूँ मैं, गढ़ना चाहती हूँ प्रेम का एक नया एहसास, कितनी अजीब हूँ मैं, गढ़ना चाहती हूँ प्रेम का एक नया एहसास, एक नया, एक अनछुआ लम्हा, एक अनछुआ लम्हा। गज़ल हाजिर करती हूँ। गज़ल का मतलब यूँ है कि टूट फूट अंदर जारी है, टूट फूट अंदर जारी है, हिजर के शब कितनी भारी है, टूट फूट अंदर जारी है, हिजर की शब कितनी भारी है, कोई हलचल नहीं है बाहर, कोई हलचल नहीं है बाहर, अंदर अंदर तैयारी है, कोई हलचल नहीं है बाहर, अंदर अंदर तैयारी है, खुद से हर पल रूठे रहना, खुद से हर पल रूठे रहना, ये भी तो एक बीमारी है, खुद से हर पल रूठे रहना, ये भी तो एक बीमारी है, धूप की नरमी बता रही है, धूप की नरमी बता रही है, दिन ढलने की तैयारी है, धूप की नरमी बता रही है, दिन ढलने की तैयारी है, बस्ती बस्ती चुप का आलम, बस्ती बस्ती चुप का आलम, जो भी शोर है अखबारी है, बस्ती बस्ती चुप का आलम, जो भी शोर है अखबारी है। अगली गज़ल पढ़ती हूँ। गज़ल का मतलब हाजिर करती हूँ कि यहाँ से बंद है हर रास्ता क्या, यहाँ से बंद है हर रास्ता क्या, कभी ऐसा भी होता है भला क्या, यहाँ से बंद है हर रास्ता क्या, कभी ऐसा भी होता है भला क्या, तो क्या इम्कान, पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं, तो क्या इम्कान अब कोई नहीं है, तो क्या इम्कान अब कोई नहीं है, सदाएं हो गई सब बेसदा क्या, तो क्या इम्कान अब कोई नहीं है, सदाएं हो गई सब बेसदा क्या, खुलेगी आज उसकी बंद मुट्ठी, खुलेगी आज उसकी बंद मुट्ठी, किसी का होगा कोई फ़ायदा क्या, खुलेगी आज उसकी बंद मुट्ठी, किसी का होगा कोई फ़ायदा क्या, अचानक ओढ़ ली क्यों सबने चुप्पी, अचानक ओढ़ ली क्यों सबने चुप्पी, हमारा हो रहा था तज़किरा क्या, अचानक ओढ़ ली क्यों सबने चुप्पी, हमारा हो रहा था तज़किरा क्या, उतारी जा चुकी हूँ। बतौर ख़ास ये शेर पढ़ती हूँ कि उतारी जा चुकी हूँ चाक से मैं, उतारी जा चुकी हूँ चाक से मैं, किसी का फर्ज पूरा हो गया क्या? उतारी जा चुकी हूँ चाक से मैं, किसी का फर्ज पूरा हो गया क्या? उतर आए हैं पलकों पर सितारे, उतर आए हैं पलकों पर सितारे, फलक पर चांद तन्हा रह गया क्या? उतर आए हैं पलकों पर सितारे, फलक पर चांद तन्हा रह गया क्या? और मक्ता हाजिर करती हूँ कि खुशामत कर रहा है सारा गुलशन, खुशामत कर रहा है सारा गुलशन, किसी का राज जाने है सबा क्या? यहाँ से बंद है हर रास्ता क्या? कभी ऐसा भी होता है भला क्या? अगली गज़ल का मतलब पढ़ने की इजाज़त चाहती हूँ कि था खफा मुझसे बदगुमान भी था, था खफा मुझसे बदगुमान भी था, और वही मुझ पे मेहरबान भी था, था खफा मुझसे बदगुमान भी था, और वही

लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म भाभी में सुना। गीत राजेंद्र कृष्ण का था, संगीत चित्रगुप्त का। लता मंगेशकर की ही आवाज़ में आइए सुनते हैं शैलेंद्र की लिखी ये गीत रचना। संगीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है पतिता।

फिल्म बड़ी बहन का गीत एक बार फिर हम लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनवा रहे हैं। गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत हुस्न लाल भगत राम का।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है राम और श्याम।

श्रोता साथियों, इस गीत की जानकारी हमने आपको गलत दे दी थी। ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म मल्हार से था। गीत इंदिवर का, संगीत रोशन का। और जो गीत हमने आपको पहले बताया था, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, राम और श्याम फिल्म का, जिसके गीतकार शकील बदायूनी और नौशाद हैं, आइए अब आपको सुनवाते हैं

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म मदर इंडिया का ये गीत। गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।

आइए अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम मनमौजी, गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत मदन मोहन का है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में फिल्म भरोसा का ये गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। समाचार प्रभात थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहाँ नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात

0: जातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, ऐसा यार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा ऐसा यार। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग।

0: वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने CBSE की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, CBSE ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है। अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली, रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज। Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port, but

0: वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हरस्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

क्रांति पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं झुक पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था। सेलुलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ये क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहाँ के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण ने मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया।

उस समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर इसके वृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आज़ादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए ये संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय की तरह था जिसने उन्हें औपनिवेशिक दास्ता की बीड़ियों को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। इस तरह उनके जीवन को एक दिशा मिली, एक अटल लक्ष्य जिसके लिए जीने और मरने का उन्होंने संकल्प लिया। 1930 का दशक आते आते क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब तक वो अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे। मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गांव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तारी के बाद मोहन किशोर नामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर नामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाए।

ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी सन 1933 में मोहन किशोर नामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कोनार, सतीश पाखराशी, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण रॉय और निरंजन सेन जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर नामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थीं। इन परिस्थितियों ने कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई सन 1933 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर नामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में उनके महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाएं और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर नामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया क्योंकि हड़ताल तुड़वाने के लिए घड़ों में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर नामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में ये नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई सन 1933 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोइत्रा भी 2 दिन बाद शहीद हो गए। इन 3 क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगें मान ली गईं। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसी महान विभूतियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक ना रहे बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों में भी तेजी लाई जाए। श्री मोदी ने छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने सार्थक PDS फेज 2 के लिए 25,530 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में AI और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज़्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने बकरीद पर कुर्बानी तय जगहों पर करने को कहा है। इसके अलावा कुर्बानी के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। भोपाल की तुषा शर्मा मृत्यु मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जांच नहीं की। अब CBI गिरिबाला सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और IPL एलिमिनेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब कल राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। जीतने वाली टीम अहमदाबाद में रविवार को फाइनल मुकाबले में RCB से भिड़ेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोताओं, आज है ईद उल अजहा, जिसे आम बोलचाल में बकरीद कहा जाता है। ये इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, और यदि हम ये कहें कि हमारे हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है तो गलत नहीं है। ये पर्व त्याग सिखाता है, समर्पण, करुणा, इंसानियत का संदेश समाज में देता है। यूँ तो ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन समाज में

प्रेम, भाईचारा और ज़रूरतमंदों की सहायता की भावना को मजबूत करता है। दरअसल हज़रत इब्राहीम की एक महान कुर्बानी है जिसे ये त्यौहार याद करता है। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी सबसे प्रिय चीज़ अपने पुत्र को कुर्बान करने का संकल्प किया था, और जब वो पुत्र की कुर्बानी देने जा रहे थे तो ईश्वर ने उनकी कुर्बानी से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के स्थान पर एक दुम्बा रख दिया था। कुर्बानी दुम्बे की हुई थी और उसी के प्रतीक स्वरूप बकरे की कुर्बानी दी जाती है। सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी चूँकि हज़रत साहब ने दी थी, हज़रत इब्राहीम ने दी थी, इसी वजह से इस समय प्रिय चीज़ को कुर्बान करने का संकल्प किया जाता है। दरअसल ये त्यौहार हमें सिखाता है कि जो भक्ति है, जो समर्पण है, वो शब्दों में नहीं होता, त्याग और विश्वास में होता है। यदि हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं और त्याग करके पूरी मानवता को एक समान समझते हैं तो ही ईश्वर की सच्ची आराधना होती है। लोग इस दिन नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, कुर्बानी की परंपरा निभाते हैं। और ये जो कुर्बानी दी जाती है ना, ये कुर्बानी तीन हिस्सों में बांटी जाती है। एक हिस्सा अपनों के लिए होता है, एक रिश्तेदारों और मित्रों के लिए होता है, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो ज़रूरतमंदों में बांटा जाता है। सीधी सी बात है कि जो आपके पास अधिक है उसको तीन हिस्से कीजिए, एक हिस्सा आपके लिए है सिर्फ। आप अपने पास मौजूद संसाधनों का सिर्फ तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करें, एक हिस्सा अपने मित्रों और रिश्तेदारों के बीच तकसीम करें और एक हिस्सा ज़रूर उन लोगों के बीच में बांटें, परोपकार करें जो ज़रूरतमंद हैं। यानी दान की जो महत्ता है वो यहाँ भी दिखाई देती है। हमारे हिंदुस्तान में कोई भी त्यौहार मनाया जाता है उसका उद्देश्य सिर्फ उत्सव मनाना नहीं होता, बल्कि इन त्यौहारों से दिल जुड़ते हैं, मानवता मजबूत होती है। श्रोता साथियों, आज पार्टीज़ का दिन है, अच्छे अच्छे खाने खाने का दिन है, लोगों से मिलने का दिन है, और हाँ, कुर्बानियाँ करने का दिन है। अपने किसी प्रिय के लिए, इस पृथ्वी पर मौजूद मानवता के लिए, इस धरती के स्वास्थ्य के लिए हम सब मिलकर कुछ न कुछ त्याग ज़रूर करें। यही त्याग कुर्बानी है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। तूलिका आपके साथ है। श्रोताओ, कार्यक्रम को आरंभ करते ही हम आपसे नमस्कार करते हैं, बल्कि उससे भी पहले जब कार्यक्रम आरंभ होता है तो एक जोरदार आवाज़ आपके सामने आती है, गुड मॉर्निंग ग्वालियर। और ये जो अभिवादन है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है संबंधों की। आपने देखा होगा जब आप किसी के घर जाते हैं तो अभिवादन करते हैं, कभी आप हाय और हेलो बोलते हैं, कभी नमस्कार बोलते हैं, कभी चरण स्पर्श, कभी प्रणाम, अलग अलग तरह के संबोधनों से आप अलग अलग लोगों को नवाजते हैं। ये जो नमस्कार का तरीका है, ये किसी से भी आत्मीयता या जुड़ाव का संकेत होता है। लेकिन आजकल ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम अक्सर जाने पहचाने लोगों को भी इस तरह के अभिवादन ना करके इग्नोर करते हैं। आपने महसूस की है क्या ये बात? दरअसल हम मोबाइल के ईयरप्लग्स कानों में लगाकर, मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाकर उस परिस्थिति से दूर हो जाते हैं जिस परिस्थिति में हम मौजूद होते हैं। हमारे सामने हमारे परिचित होते हैं और हम अपने मोबाइल फ़ोन में घुसकर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और इस तरह से न सिर्फ हम एक संबंध को इग्नोर करते हैं, बल्कि समाज से अपने जुड़ाव को भी इग्नोर कर देते हैं। और जब हम अपने इस जुड़ाव को इग्नोर करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने आप को थोड़ा सा अकेला कर देते हैं। आपने कई सारे उदाहरण देखे होंगे कि लोग अगल बगल से गुजरे जा रहे हैं और एक मुस्कुराहट तक भी पास नहीं कर रहे। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देना भी एक तरह का अभिवादन ही है। कुछ बोल देना उससे अगला स्टेप है, और उसके बाद बातों का सिलसिला चल निकलना, ये उससे भी आगे का स्टेप है। यदि आप ये तीनों स्टेप फॉलो करें तो क्या होगा? आप कभी भी तनावग्रस्त नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। समाज से जुड़े रहना आपको अकेलेपन का एहसास कभी नहीं कराएगा। ये तो वो बात हुई कि आप अपने जान पहचान वालों से नमस्कार करें और उनको देखकर मुस्कुराएं और उनसे बातें करें, लेकिन क्या कभी आपने अजनबियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है? आप कहेंगे अजनबियों के साथ कौन मुस्कुराता है, हंसता बोलता है? तो चलिए आपको एक सिचुएशन में ले चलते हैं। जब आप कहीं सफ़र कर रहे होते हैं और विशेष तौर पर ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो क्या आप अपने आसपास वाले लोगों से बातें करते हैं? मैंने तो अक्सर ये देखा है कि लोग वहाँ भी अपने अपने शेल में, अपने अपने बबल में कैद रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, कानों में ईयरप्लग्स रहते हैं। अगल बगल वाला क्या कर रहा है, कौन है, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता। और ऐसे में जब आप अपने बगल में यात्रा कर रहे, कम से कम कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 24 घंटे और 36 घंटे की भी यात्रा कर रहे होते हैं लोग, और अपने सामने वाली बर्थ पर या अगल बगल वाले लोगों से बातें नहीं करते, जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं ना, तो जो परिचय या संबंध है वो नहीं बन पाता, और ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे से खिन्नता महसूस होती है। एक उदाहरण बताती हूँ इसका। अभी कुछ ही दिन पहले हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, जैसे ही हम अपनी बोगी में चढ़े और हमारी सारी सीट्स अपर बर्थ थी, तो लोअर बर्थ जिनकी रिजर्व थी वो लोग दिन के समय भी, बल्कि यूँ कहें शाम का समय हो रहा था, शाम के समय भी अपनी बर्थ पर अपना बिस्तरा बिछा करके लेटे हुए थे। हम जैसे ही पहुँचे हमें बैठने को जगह नहीं थी, मुश्किल से उनके पैरों के पास हम बैठे थे। चूँकि हमारा ग्रुप बड़ा था, हम आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते हमने उनसे भी बातचीत शुरू कर दी जो लोग लेटे हुए थे। हालांकि उन्होंने हमें जगह नहीं दी थी, हम चाहते तो उन्हें इग्नोर कर सकते थे क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था। धीरे धीरे वो भी हमारी बातचीत में शामिल हो गए और एक वक्त ऐसा आया कि जो लोग हमें बैठने को सही तरीके की जगह नहीं दे रहे थे, जितनी हमारी जितना हमारा हक था उस आधी सीट पर, रात तक तो हमारा आधा हक था ही, तो वो लोग हमें बैठने की भी जगह नहीं दे रहे थे। लेकिन जब रात में हमने अपना खाना खोला तो हमने हमारे साथ उन्होंने हमारा डिनर शेयर किया। तो ये जो व्यवहार में परिवर्तन था ये सिर्फ इसलिए था कि हमने आगे बढ़कर पहल की थी कि हम उनसे बातचीत कर रहे थे और सामान्य बातचीत थी, हम कोई भी अपने राज उनसे शेयर नहीं कर रहे थे, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, हंसी मजाक उसी में गप्पे चल रही थी, तमाम फिल्मों की गानों की बातें चल रही थी। ये बातें ऐसी हैं जिनमें हर व्यक्ति अपना इंटरेस्ट शो कर देता है, बस यहीं से बात चल निकलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं इन ट्रेन्स में या इस सफ़र के दौरान जो आपको बाद तक याद रहते हैं और याद करके उस घड़ी को आप खुश हो लेते हैं। यही अगर उल्टा हो कि आप चुपचाप पूरा ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो आपको ट्रेन का सफ़र भी बोझिल लगेगा और साथ ही आप अजनबियों से नहीं जुड़ पाएंगे, अपने आप को उतनी देर स्ट्रेस में रखेंगे। यदि आप भी ऐसा करते हैं कि अपना पूरा सफ़र चुपचाप करते हैं या किसी को देखकर अभिवादन नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो आज से ये बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने ये करना शुरू किया आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे, आप न सिर्फ लोगों पर यकीन ज़्यादा कर पाएंगे बल्कि आपका अपने ऊपर भी यकीन बरकरार रहेगा।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। श्रोता साथियों, आइए एक और ख़ास बात आपसे करेंगे, वो है ग्रीन एनर्जी के बारे में। ग्रीन एनर्जी क्या है आप सब जानते हैं। यदि सीधे तौर पर आपको समझाना चाहें तो यदि हम बिजली विभाग से मिली हुई बिजली का इस्तेमाल ना कर खुद अपनी बिजली बनाएं, यानी सोलर पैनल लगा करके अपनी बिजली बनाएं, तो उसे हम ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। तो ये ग्रीन एनर्जी यदि आप अपने घर पर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आप जो बिजली के जो परंपरागत साधन हैं उन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे होते हैं, लेकिन इसका एक रिवाइंड इफ़ेक्ट भी होता है, रिबाउंड इफ़ेक्ट बोलते हैं उसे। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल शहरों और कस्बों में बहुत तेज़ी से ये सोलर पैनल दिखाई दे

देने लगे हैं और सोलर पैनल के साथ साथ घरों में एसी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। न सिर्फ बिजली बल्कि नलकूपों पर भी हमारी जो निर्भरता है वो कम होती जा रही है। अपने अपने घरों में हमने बोरिंग्स करा ली हैं और बोरिंग्स हम गहरी कराते जा रहे हैं और जितनी हमारी गहरी बोरिंग होती है हमें पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती है। सौर ऊर्जा के पैनल लगाने पर भी बिजली की उपलब्धता हमें सामान्य से अधिक हो जाती है। यही शुरू होता है रिबाउंड इफ़ेक्ट। जब उपलब्धता हमें कम होती है तो हम इस्तेमाल कम करते हैं, चाहे वो बिजली हो या पानी हो। जब इफ़रात में हमको उपलब्धता होती है तो हम बिना सोचे समझे इन दो संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं और यही रिबाउंड इफ़ेक्ट है। हम ये सोचते हैं हमने तो ग्रीन एनर्जी बनाई है, उसका इस्तेमाल करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान होता है, पृथ्वी की सेहत पर नुकसान होता है। हम जितना ज़्यादा एसी चलाते हैं या उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, हम वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं और इसकी वजह से हमारा पर्यावरण जो है, हमारा वातावरण जो है वो गर्म होता जाता है। थोड़ा गर्म हमारा पर्यावरण होता है और हम फिर उतना ज़्यादा एसी चलाने लगते हैं या कूलर चलाने लगते हैं। ऊर्जा का इस्तेमाल तो हम कर ही रहे हैं ना। दरअसल होना ये चाहिए कि हम सौर ऊर्जा के पैनल लगाएं और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को न बढ़ने दें, पर्यावरण पर दबाव न बढ़ने दें। बस इतनी सी बात समझने की है। दरअसल हमारा संयम जो है वो जब हमें इफ़रात में चीज़ें मिलने लगती हैं तो वो कम हो जाता है और जितना ज़्यादा वातानुकूलन एसी से हम करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने वातावरण को गर्म करेंगे। आप देखते होंगे कि शहरों में गर्मी ज़्यादा है बनिस्बत गाँवों के। गाँवों में भी अब एसी लगने लगे हैं, लेकिन हाँ अभी उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी शहरों में। तो आप एसी लगवाएं, अपनी सुविधा के लिए लगवाएं, लेकिन उसके इस्तेमाल में थोड़ी सी किफ़ायत बरतें। आपका बिल भी सही सलामत रहेगा और पृथ्वी की सेहत भी।

और इसके साथ ही आज का ये गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। कल फिर हम इस कार्यक्रम के साथ हाजिर होंगे, आपके साथ होंगे और कुछ नई बातें करेंगे। फिलहाल जाने की इजाज़त चाहती है आपकी दोस्त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पारुल दीक्षित का शास्त्रीय गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विकास विपत और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान। आइए सुनते हैं पारुल दीक्षित का राग अलहिया बिलावल में गाया ये ख्याल।

गुना जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले विकास और उद्योगों की। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। करीब 1060 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री से 1500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे तो युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा और इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना क्षेत्र में सड़क अधोसंरचना और विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। रोजगार की दिशा में युवा संगम कार्यक्रम भी खास रहा। जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में 850 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 529 युवाओं का अलग अलग निजी कंपनियों में शुरुआती चयन हुआ और मौके पर ही ऑफर लेटर भी दिए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में 3136 हितग्राहियों को 21,30,00,000 रुपए से ज्यादा के हित लाभ बांटे गए। अब बात पानी और पर्यावरण की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा पर भुजरिया तालाब में विशेष कार्यक्रम हुआ। लोगों ने सामूहिक गंगा आरती की, जल संरक्षण की शपथ ली और पानी बचाने का संदेश दिया। वहीं कंजा गांव में कूनो नदी के उद्गम स्थल पर भी बड़ा आयोजन हुआ। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रमदान कर लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाया। प्रशासन का कहना है कि कूनो नदी संरक्षण और स्टॉप डैम निर्माण से आने वाले समय में सिंचाई और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। खेती किसानी की बात करें तो खरीफ 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिले भर में किसान चौपालें लगाई जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। गांव-गांव कृषि रथ भी पहुंच रहे हैं जो किसानों को नई योजनाओं और खेती के नए तरीकों से अवगत करा रहे हैं। दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। किसानों को ई विकास प्रणाली के जरिए खाद वितरण किया जा रहा है। किसान सुबह 7 बजे से ई टोकन बुक कर अपनी जरूरत के अनुसार खाद ले सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से डीएपी के बजाय एनपीके और नैनो उर्वरकों के उपयोग की अपील भी की है। गेहूं खरीदी का काम भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जिले में अब तक 67,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसानों के लिए 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर हुई है और अधिकांश भुगतान सीधे खातों में पहुंच चुका है। अब बात स्वास्थ्य की। जिले में 25 से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और शपथ अभियान चल रहे हैं। लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने की अपील भी की गई। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने पर लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर बाहर जाने की सलाह दी गई है। पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान चला रहा है। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोज योग शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव योग सत्रों के जरिए भी लोगों को योग से जोड़ा जा रहा है। विशेष जनजाति समूहों यानी PVTG परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं पात्र लोगों तक पहुंचाई जा रही है। गुना जिला अब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में जुट गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले की पुरानी पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 70 साल से ज्यादा

0: पुराने दस्तावेजों को मोबाइल ऐप के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो नेशनल लोक अदालत में जिले भर के 1382 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। इसमें करीब 2800 लोगों को फायदा मिला और वर्षों पुराने विवाद खत्म हुए। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी पहल हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने उत्कृष्ट छात्रावासों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की तैयारी की है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसी तरह आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इन योजनाओं के जरिए युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, कानून और सामाजिक कार्य से जुड़े अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे की। ये आकाशवाणी भोपाल।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, सुमित गम्हाणकर, ध्वनि गम्हाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गम्हाणकर, सिद्धांत गम्हाणकर, अर्जुन गम्हाणकर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर, सरिता गम्हाणकर, प्रिंस और एकांश गम्हाणकर। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर सुखविंदर सिंह आनंद राज आनंद और कृष्णा का गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार अजय अतुल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तेरे

अदनान सामी और साथियों को अभी आपने फिल्म बजरंगी भाईजान में सुना। कौसर मुनीर के गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। इस गीत को सुनना चाहते थे हमारे ये सभी श्रोता। आप हैं परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, हितेश संघई और प्रीतेश संघई, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया, हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, इमरान अनाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, नूर महल महसौल, सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज। इसी गीत को सुनना चाहते थे आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कच्चे धागे से। गीत नुसरत फतेह अली खान का है, संगीत भी नुसरत फतेह अली खान का और आवाज़ भी उन्हीं की।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद। आप हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, जामा मस्जिद रोड गोगामा से हाजी इशाक लोला मनी, मोहम्मद उमर कासमी, मोहम्मद शादाब खत्री, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, लोहगढ़ ठाकुरावाला ज़िला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, रोहिदास चौक पंढरपुर से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का गाया फिल्म वीर ज़ारा का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार मदन मोहन।

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने?

0: है? हा?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: और अब कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता, आप हैं बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, ग्राम संथलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म ये दिल आशिकाना का ये गीत, जिसे गाया है साबरी बंधु, सोनू निगम, अलका याग्निक और तौसीफ ने। गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जांच नहीं की। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने कल खजुराहो में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रमुख कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, तेज़ गर्मी और लू से बचाव करने के लिए हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन में चल रहा है। 2 जून तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक

0: तय जगहों पर करने को कहा है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने कुर्बानी के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूं फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। श्रोताओं आज बातें योग की। अमूमन लोगों का सोचना होता है कि जब हम स्वस्थ हैं तो योग की क्या जरूरत है, ना हमें शारीरिक परेशानी है ना मानसिक, तो ऐसे में योग क्यों करें। यहाँ बता दें योग शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखता है। योग से आनंद की अनुभूति होती है और आनंद को सुख के ऊपर की स्थिति कहा गया है। तो चलिए आज कार्यक्रम में जानते हैं कि हमारे श्रोता योग के बारे में क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ समझते हैं वो योग से। नमस्कार।
3: नमस्ते मैम
2: जी, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आपका परिचय दीजिए।
3: मैडम मैं सतना एमपी से बोल रही हूँ।
2: जी जी, आपका नाम बता दीजिए।
3: मैं मिसेस टंडन हूँ
2: जी। आज हम जानना चाहेंगे कि योग जो है, योग के विषय में हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप योग के बारे में क्या कुछ समझती हैं, क्या अनिवार्यता है इसकी अपने जीवन में, ये बताएं।
3: मैडम योगा करने से देखिए, एक तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है
2: जी,
3: और साथ में जितने जैसे मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं योगा करने से वो ठीक रहेगा, और शरीर में डिटॉक्स भी हो जाता है, अपने पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी हो जाती है मैम
2: जी। मिसेस टंडन हम ये जानना चाहते हैं कि योगा जो है नियमित रूप से आप करती हैं।
3: हाँ मैम, मैं नियमित रूप से करती हूँ। अगर यदि कभी छूट जाता है तो भी मैं शाम को कर लेती हूँ। दिन में अगर मैं करती हूँ, अगर छूट जाता तो मैं शाम को करती हूँ। मेरा भी बहुत वेट बढ़ गया था तो योगा करने से, और थोड़ा सा पौष्टिक भोजन करती हूँ मैं रोज सुबह, मैं जैसे स्प्राउट वगैरह इस तरह के खाना खाती हूँ
2: जी,
3: और घर के भी बच्चे सबको मैनेज कराना चाहती हूँ योगा।
2: तो इससे आपको लाभ हुआ?
3: बहुत लाभ हुआ मैडम, मेरा वेट कम हो गया। मेरे को जो बहुत स्वेलिंग वगैरह रहती और नसों में दर्द वगैरह होती थी उससे बहुत आराम मिलता है मैडम। और जिस दिन अगर छूट जाता है तो फिर मेरे को बहुत दर्द होता है मतलब। और योगा करना चाहिए सबके लिए, योगा जरूरी है। एक आप 5 मिनट का समय निकाल करिए, 5 मिनट के लिए अपने लिए समय निकालिए और योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए जिससे माइंड फ्रेश रहता है
2: जी जी जी,
3: और शरीर स्वस्थ रहता है
2: जी,
3: जो पूरे दिन की दिनचर्या आपकी अच्छी रहेगी।
2: चलिए तो नियमित दिनचर्या में हम योग शामिल करें।
3: नियमित दिनचर्या अच्छी रहेगी
2: जी जी जी। चलिए बहुत अच्छा लगा मिसेस टंडन आपसे बात करके।
3: थैंक यू मैम
2: जी, धन्यवाद आपने फोन किया।

0: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार मैडम जी
0: जी, किससे बात कर रहे हैं हम?
1: मेरा नाम भोली शंकर साहू है, हम नरसिंहपुर जिले से बोल रहे हैं। बढ़िया है मैडम जी।
0: जी आज बात आपकी गीत हमारे में, हमने योग विषय रखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं भोले शंकर साहू जी, योगा करने के क्या फायदे होते हैं?
1: बहुत से फायदे मैडम, शरीर स्वस्थ रहता है।
0: हाँ, और हाँ, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी अच्छा रहेगा, मन से भी हम प्रसन्न रहेंगे, है ना? तो क्या योगा आप दिनचर्या में अपनाते हैं?
1: हाँ अपनाते हैं मैडम, अपनाते हैं।
0: तो योगा करने की क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे आप योगा के बारे में लोगों को?
1: हमारे ख्याल से मैडम ये है कि रोज योगा करना चाहिए सुबह शाम।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: और यदि वक्त ना मिल पाए तो
1: नहीं, इतना तो निकालना चाहिए मैडम वक्त की अपन योगा कर सकें।
0: जी
1: ज्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट कम से कम कर सकें रोज सुबह शाम।
0: चलिए सही बात कही आपने भोले शंकर साहू जी कि हमें नियमित योगा करना चाहिए, शरीर के लिए इतना वक्त तो निकालना ही चाहिए। चलिए बहुत अच्छा लगा भोले शंकर साहू जी, नरसिंहपुर से आपने फोन किया
1: जी,
0: बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: जी नमस्कार।
1: मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी तो क्या इस गर्मी में भी आप योगा करते हैं?
1: योगा तो नहीं कर पाते हैं।
0: क्यों नहीं?
1: जल्दी सोए।
0: आप योगा नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या योगा की महत्ता को आप मानते हैं, उसके महत्व को समझते हैं?
1: महत्ता तो बहुत ज्यादा है, योगा से सब कुछ निरोग रहते हैं सभी लोग।
0: जी तो योगा करने की सलाह आप देना चाहेंगे लोगों को कि योग करना चाहिए?
1: योगा करें, प्राणायाम करें, सुबह से घूमने जाएं। जी
0: तो योगा आप क्यों नहीं कर पाते?
1: मैडम क्या है, हमारा काम इस टाइप का है कि थोड़ा रात में लेट पहुंचते हैं घर पर।
0: जी
1: तो थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाते, उस वजह से नहीं कर पाते हैं।
0: जब आप हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं तो योग के लिए भी जरूर वक्त निकालें।
1: बिल्कुल निकालेंगे, आपके कहने पर मैं कल से ही शुरू करता हूँ मैडम।
0: जी बिल्कुल। और देखिए योग जो है ये भारत से ही शुरू हुआ था, है ना? तो हम भारतीय

0: है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ये विधा हमारे पास में है।
1: शिक्षा के उसमें सब्जेक्ट भी लिया गया है।
0: हाँ, योग तो कहीं कहीं पर अनिवार्य विषय भी है, आज भी है ना,
1: जी।
0: लेकिन अनिवार्य रूप से इसे हर जगह नहीं अपनाया गया है ना। तो योगा जो है वो हमारे जीवन में एक सेहत की कुंजी है वो।
1: बिल्कुल, बाकी मैं ठंड के दिनों में तो प्रयास करता हूँ करने का,
0: चलिए
1: बाकी अभी तो नहीं कर पा रहे हैं।
0: नहीं, चलिए जो भी संभव हो मेडिटेशन कर लीजिए, मन की शांति के लिए ही कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप योग को अपनाएंगे
1: जी।
0: जी, नमस्कार।

0: हेलो,
1: जय श्री राम।
0: जय श्री राम। बताएं कौन बोल रहे हैं आप,
1: मैं किशन घी वाला बोल रहा हूँ,
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप
1: दमोह से। जी
0: जी? कैसे हैं किशन जी?
1: ठीक है, गर्मी बहुत है। हाँ
0: जी, गर्मी तो वाकई में बहुत पड़ रही है। किशन जी, हम जानना चाहते हैं योग यानी होता है जोड़ना या बांधना, है ना?
1: जी
0: और शरीर और आत्मा को साथ लाने का माध्यम है योग, क्योंकि इससे मन की शांति भी आती है।
1: जी जी
0: तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप योग के

0: बारे में। योग जीवन में आपके लिए क्या महत्व रखता है, एक मनोभाव से जोड़ करके आप बताएं, या योग को आप जीवन में किस तरीके से देखते हैं?
1: ये बहुत ही कठिन है। चलो, आपने व्यक्तिगत मुझसे पूछा है
0: जी
1: तो मैं बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि जीवन में तो बहुत सारी ही कठिनाइयाँ रहती हैं मेरे ख्याल से।
0: हाँ हाँ
1: पग पग के ऊपर कठिनाई रहती है, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो,
0: जी
1: कंपटीशन रहते हैं।
0: जी
1: लेकिन अपने आप को योग से जोड़ना, अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ देता हूँ।
0: जी
1: न्यूट्रल,
0: हाँ
1: आप समझी ना,
0: हाँ हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल शून्य मान के छोड़ देता हूँ कि चलो जो होना है वो तो होना ही है, और एक बिल्कुल ही जीरो समझ के, जैसे अपन अपनी गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ देते हैं ना, जिधर जाना चली जाती है, घूमती जाती है,
0: जी
1: लुढ़कती जाती है,
0: जी
1: बस ऐसे अपने आप को छोड़ के शांत मतलब मैं देखता हूँ, तभी
0: हाँ
1: मुझको लगता है कि मेरे आत्मा जो है बिल्कुल जुड़ रही है
0: हाँ
1: उससे, और एक विशेष शांति मिलती है। यही है
0: तो
1: मेरा,
0: आप
1: यही
0: जो
1: योग है।
0: ये शून्य पर जब आप पहुंचते हैं, तो उसे आप मतलब मेडिटेशन से जोड़ करके किस प्रकार से कहेंगे कि एक मानसिक शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है?
1: एक बहुत ही सुकून मिलता है उस
0: जी
1: समय जब
0: जी
1: हम अपने आप को बिल्कुल
0: जी
1: जीरो जीरो मान लेते हैं ना,
0: हाँ हाँ
1: अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: किसी काम कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस सच माना तो बस ऐसा ऊपर ही ऊपर दिखता रहता है, आकाश आकाश शून्य दिखता रहता है, विशाल दिखता रहता
0: हाँ हाँ
1: है। यही यही एक अनुभव होता है उस समय जो आप पूछ रहे थे।
0: योग में मेडिटेशन एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट भाग होता है, जिससे मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना? और आज तो तनाव हर किसी के जीवन में है, किसी ना किसी प्रकार के व्यवधान जीवन में आ रहे हैं, और उसको हम छोड़कर आगे
1: बिल्कुल,
0: बढ़ें, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है।
1: और
0: जी
1: ये नहीं कि एक मुझे को, हर एक को, जितने
0: जी
1: भी
0: बिल्कुल
1: लोग हैं, जितने भी संसार में,
0: जी
1: चाहे वो मनुष्य हैं और चाहे वो प्राणी हैं,
0: हाँ
1: हर एक को मतलब पग पग के ऊपर कंपटीशन है, और एक संघर्ष सा है
0: जी
1: जीवन, एक संघर्ष सा रहता है।
0: चलिए
1: लेकिन अपने आप को शून्य कर लेना, यही एक सबसे अच्छी बात है।
0: जी बहुत अच्छा लगा किशन जी आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि आपके इस शून्य पर ले जाने के बाद मेडिटेशन वाली जो बात आपने कही है, उस पर हमारे श्रोता जो हैं वो ध्यान देंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। जी
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद,
0: जी
1: आपने बड़ा अच्छा विषय विषय चुना है,
0: जी जी
1: बहुत ही गंभीर विषय चुना है आपने।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम जी, मैं श्रोता हूँ मैम जी, और सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ आपके साथ।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया। कौन बोल रहे हैं और आपका परिचय बता दीजिए।
1: जी मैं आपका नियमित श्रोता मैम जी, जय नरसिंहदेव, एफएम रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील होटेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार।
0: आज

0: उसके जो मैम जी जो भी तीन चार चीजें करता हूँ मैं लगभग 20-25 मिनट के लिए अपने आप को समय देता हूँ
1: जी।
0: तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई सबको करना चाहिए, ये आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी मेरे ख्याल से आपके शरीर में होना ही नहीं।
1: चलिए ये तो रही योग में आप जो आप करते हैं, योग के लिए क्या समझाइश देंगे कि क्या लोगों के पास में समय का टोटा है, कहते हैं हमारे पास में वक्त ही नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप?
0: ये सबके पास बहाना रहता है मैम जी, मेरे पास भी समय नहीं है लेकिन मैं समय निकालता हूँ, किसी के पास किसी प्रकार का समय नहीं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें समय निकालना चाहिए। मोबाइल के लिए लोग समय निकाल लेते हैं, रेडियो सुनने के लिए समय निकाल लेते हैं, खाना खाने के लिए समय निकाल लेते हैं।
1: हाँ हाँ भाई, हम रेडियो के लिए तो जरूर कहेंगे कमलेश जी कि हमारा रेडियो किसी के कार्य में व्यवधान नहीं डालता है ना, आप योगा करते वक्त भी रेडियो सुन सकते हैं।
0: नहीं मैम जी, मैंने मान लो एक बात और रखी, खाना खाने के लिए समय निकाल लेते हैं, पानी पीने के लिए समय निकाल लेते हैं, हमारे शरीर को यदि चलाना है आपको स्वस्थ रखना है तो योग के लिए जरूर बहाना ना बनाएं, समय निकालें के लिए जरूर कमर पकड़ करें।
1: कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से हम भोजन या मोबाइल की बात आपने कही है, टीवी की, पढ़ाई की, है ना, अपने मनोरंजन की, हर प्रकार के लिए जब हम वक्त निर्धारित करते हैं तो अपने शरीर के लिए ज़रूर हम वक्त निर्धारित करें और उसको एक नियमित समय पर करें तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो पाता है तो जब कभी भी इस वक्त मिले हमें योगा ज़रूर करना चाहिए।
0: और मैम जी एक बात और रख दूँ आखिरी
1: जी,
0: कि हम अपने आप को फ्रेश करने के लिए साल में एक दो बार जरूर कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं सपरिवार।
1: हाँ हाँ,
0: तो क्यों जाते हैं बताइए, ये मेरा प्रश्न आपके अलावा पूरे श्रोताओं से है, तो हम अपने आप को फ्रेश रखने के लिए कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र या कह सकते हैं पर्यटक क्षेत्र में चले जाते हैं, दो चार दिन गुजारते हैं बढ़िया, वो फ्रेश होकर जाते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं, तो एक ऊर्जा मिलती है, तो मैं समझता हूँ ये ऊर्जा यदि आपको कायम रखना है तो ये जरूर कीजिए और समय निकालिए।
1: चलिए बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने, प्रश्न भी आपका ही था, तो बहुत अच्छा लगा कमलेश जी आपसे बात करके, तो ऊर्जावान रहने के लिए योग जरूर करें।

0: हेलो
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
0: सोमत सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं, आज बात आपकी की थी हमारे में, कि कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना? यानी पहले से ही यदि आप चेत के रहेंगे तो बीमारी को आप दूर भगा सकते हैं,
1: हाँ
0: है ना? और इसके लिए योग अगर आप करें तो आप स्वस्थ जीवन जो है लंबे समय तक बिता सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएं?
1: बिल्कुल बात सही है। योग निश्चित ही हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है और आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनसे हमें निश्चित ही निजात मिलती है। लेकिन मेरा मानना यह है, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो
0: हाँ
1: मैंने अपने खान पान का विशेष ख्याल रखते हुए
0: हाँ
1: और जो बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोग घूमने फिरने में भी और ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए मुझे आज तक कभी भी मतलब कोई समस्या नहीं हुई। आप समझिए कि मैं 45 से ऊपर हूँ इस समय, तो
0: हाँ
1: कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखते हुए अगर हम चलें तो निश्चित ही हमें आने वाली समस्याओं का कहीं ना कहीं भान होता है पहले से। तो बिल्कुल योग एक ऐसी मैं समझता हूँ व्यवस्था है जो आसानी से हम लोग एक इससे जुड़ जाए तो हमारी जितनी भी फिटनेस की समस्या हो, हमारे शरीर में जो अंदरूनी बातें चीज समस्याएं होती है, जैसे कई लोगों के जो जन्म से समस्याएं होती हैं, कई
0: हाँ
1: लोगों को ठंड सहन नहीं होती,
0: हाँ
1: गर्मी सहन नहीं होती, तो
0: हाँ
1: इस तरह की जब अंदर की समस्याएं होती हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जूझने में योग का निश्चित ही जो योगदान होता है
0: हाँ
1: वो हमारे जीवन को सुरक्षित बनाता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, योग बहुत जरूरी है। और हमारे संगीत, मैं तो संगीत से जुड़ा हूँ, तो योग तो निश्चित ही संगीत के लिए वरदान साबित है। आप जितनी लंबी सांस होगी उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होता है, तो
0: हाँ
1: निश्चित ही योग करना चाहिए। और ये जरूर है कि इसको करने से पहले जो इसके शिक्षक हैं जो ज्ञान रखते हैं,
0: हाँ हाँ
1: कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान नहीं होता, हम अपने स्तर से इसको करना शुरू कर देते हैं, तो कई बार लापरवाही कह लो या जानकारी कम होने के वजह से कई बार छोटी मोटी समस्याएं भी आती हैं सामने।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है सोमत सिंह साहब आपने। क्योंकि योग आप करेंगे, यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की उम्र से जुड़ी हुई कोई परेशानी है या फिर आपके जोड़ या किसी भी अन्य प्रकार की शरीर में कोई समस्या है तो पहले डॉक्टर से आप पूछ लें, है ना?
1: हाँ
0: डॉक्टर की
1: हाँ
0: सलाह जरूर ले लें कि हम योग करेंगे तो क्या ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि उससे आपकी तकलीफ और बढ़ सकती है ना?
1: हालांकि एक चीज और भी है, अगर
0: जी
1: हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहते हुए अगर हम योग से जुड़ जाएं तो और इसके फायदे हैं कि और निश्चित ही जो हमारा जीवन है आगे का
0: जी
1: वो स्वस्थ ही रहकर हम आसानी से बिता सकते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या है तो उसके पहले डॉक्टर से सलाह लेकर ही इससे जुड़े तो निश्चित ही इसका लाभ मिलना तय है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात कही सोमत सिंह आपने, और बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: जी, किन से बात हो रही है मेरी?
0: जी, मैं नीतिका वर्मा।
1: अच्छा जी, चलिए, अच्छा लगा, पहली बार बात हुई आपसे।
0: जी।

0: काल मैम, मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रही हूँ।
1: कैसी हैं संगीता पटेल जी?
0: ठीक है मैम, आप कैसी हैं? हाँ
1: जी हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छी होंगी,
0: जी मैम, सही
1: है ना?
0: है।
1: और हमारे
0: हाँ
1: श्रोता जब अच्छे रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये बताइए संगीता पटेल जी, अपनी
0: जी
1: नियमित जो दिनचर्या है, आप गृहिणी हैं?
0: जी जी
1: चलिए तो दिनचर्या में आप योग के लिए कुछ वक्त निकाल लेती हैं? योगा करती हैं आप?
0: जी मैम, मैं योगा तो नहीं करती हूँ,
1: हाँ हाँ
0: वो अपने जो सुबह के काम हैं वो करती हूँ अपने खुद से। जी
1: खैर काम तो गृहिणी को करना ही होता है, लेकिन योगा जो है एक अच्छा अभ्यास होता है शरीर के लिए। हालांकि
0: जी मैम,
1: गृहिणी जो होती हैं वो घर के जो नियमित कार्य करती हैं तो उसमें काफ़ी कुछ उनका शरीर जो है लचीला सा हो ही जाता है, पर फिर भी एक नियमित अभ्यास के साथ में यदि हम योग को अपनाएं तो शरीर को जो है वो फायदे होते हैं उससे, है ना? जैसे कि जोड़ में दर्द है या किसी प्रकार से माइग्रेन वगैरह की शिकायत है ना, मानसिक तनाव है, तो मेडिटेशन करें। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट ही दीजिए, लेकिन योग जरूर कीजिए।
0: जी मैम, अभी तो नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी कर ही नहीं पाती हूँ तो,
1: हाँ हाँ
0: और लेकिन करने की कोशिश करूंगी जरूर।
1: हम यही चाहते
0: जी
1: हैं कि आज कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे में हमने योग विषय रखा है,
0: जी
1: और तो
0: जी
1: उसको लोग भाग अपनाएं, है ना?
0: जी
1: केवल बातें नहीं
0: जी
1: करनी है, इसे अपनाना
0: हाँ
1: भी है। तो
0: जी जी
1: आपको क्या लगता है, योग करने से फायदा होगा आपको?
0: मैम, क्यों नहीं होगा, जब सबको होता है हमको क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं।
1: हाँ, और
0: जी
1: ये तो हमारे अपने भारत की विधा है ना?
0: जी मैम,
1: तो इसे हम अगर अपनाएंगे तो निश्चित
0: जी
1: ही हमें
0: जी
1: फायदे बहुत मिलेंगे।
0: मैं करने लगी हूँ।

0: मैं ग्राम भावे तहसील नारायणी जिला बांदर से बुद्धि विलास कुशवाहा बात कर रहा हूँ
1: कुशवाहा जी, आपसे जानना चाहते हैं,
0: जी।
1: योगा जो है वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है,
0: जी जी
1: तो योगा करना चाहिए, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे और योग के क्या कुछ फायदे हैं इसके बारे में आप कुछ बताएं।
0: योगा से तो हर चीज निर्भर है, शरीर का हर अंग उससे काम करता है। और योग जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: अच्छा,
0: जी हाँ
1: तो योगा को आपने अपनाया हुआ है,
0: जी हाँ
1: योग करने से आपको क्या कुछ लाभ हुए हैं?
0: जी, उससे मानसिक तनाव भी दूर होता है, शारीरिक बीमारियां भी दूर होती हैं।
1: तो योगा करने की सलाह आप देना चाहेंगे तो मैं श्रोताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे बताएं। इसे शाम को
0: जी
1: भी किया जा सकता
0: हाँ,
1: है ना?
0: और सबसे हाँ सबसे ज्यादा फायदे में अब वो लोग ना करें जिन्हें ज्यादा गंभीर बीमारियां बगैर परामर्श के।
1: बिल्कुल सही, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें
0: हाँ
1: यदि आपको किसी
0: मान
1: प्रकार
0: लो
1: की,
0: जो जिनके लिए अनुकूल है वही।
1: जिनके लिए अनुकूल है वही हैं करें, और यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ है या बीमारी है तो आप डॉक्टर से
0: हाँ
1: परामर्श लेकर के
0: तो
1: करें।
0: हाँ फायदे की जगह नुकसान हो मालूम, हम लगातार कर रहे हैं तो कहाँ से फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही आपने कुशवाहा जी,
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: धन्यवाद आपने बात की
0: नमस्कार।
1: जी। नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, योग मानसिक विकार दूर करता है, इससे सहयोग की भावना भी बढ़ती है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना योग को अपने जीवन की समय सारणी में स्थान दें। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि योग जरूर अपनाएं, लेकिन यदि आपके पास में किसी प्रकार की परेशानी है शारीरिक, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह परामर्श जरूर लें। योग अपनाएं ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। तो कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हमने बात की योग पर। अब अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायालय ने कहा कि ट्रिशा के शरीर पर पाए गए कुछ घाव उनकी मृत्यु से पहले के थे। न्यायालय

ने कहा कि जमानत देते समय पीड़िता के परिवार के आरोपों को नज़रअंदाज किया गया। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारियां की जा रही है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5,000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के लिए देगी। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आईपीएल क्रिकेट में कल शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इनमें से विजेता टीम 31 मई रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म याराना से, आवाज किशोर कुमार की, गीत लिखा था अनजान ने और संगीत था राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा था नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत था आरडी बर्मन का। फिल्म थी शान। इस गीत को सुनना चाहा था घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। इसी गीत को सुनना चाहा था लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू ने।

श्रोताओ, ये गीत आपने सुना फिल्म कुदरत से लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी मजरूर की और इसे संगीत में बनाया था आर डी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया था गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शुएब पोत्रा, मुश्तबा खान, रऊफ और शाहिद भाई ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म कर्ज से, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद किया था आप सभी ने सिंगपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म आशा से। स्वर लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। रंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा, आप सभी की पसंद पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ये गीत।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अंतराल का समय समाप्त हुआ।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: तो प्रस्तुत है धारावाहिक की दूसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह अपने मामा करीम के लड़के मुश्ताक से हो जाता है। सारे अपने ससुराल में खुश है। उधर सारे की अम्मी बीमार हैं और उसे याद कर रही हैं। अब आगे
1: अरे आप
2: वादा वादा ये ले दवा हकीम जी से लाया हूँ खा ले आराम आ जाएगा।
1: अब बर्दाश्त नहीं होता नहीं बचूंगी शायद।
2: अरे ऐसा क्यों कहती हो हकीम जी कहते थे दवा खाने और आराम करने से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
1: आराम कहाँ से होगा काम कौन करेगा।
2: तुम नाहक ही परेशान होती हो।
1: मैं ना परेशान हूँ तो कौन होगा और घर में है ही कौन। तुम तो काम पर चले जाते हो दिन भर घर तो मुझे ही संभालना पड़ता है।
2: फाता घर तो संभालने से ही संभलता है। तुम ठीक हो जाओ समय पर दवा ले लेना जिससे दवा का असर जल्द हो।
1: तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी।
2: अरे मैं ना करूं तो कौन है जो तुम्हारी फिक्र करे।
1: सारे होती तो कम से कम दो रोटियां तो सेक कर खिलाती तुम्हें।
2: अरे बेगम सारे अपने घर में खुश है फिर उसे क्यों तकलीफ दें। और फिर बेटी अपने घर में रहे ये कौन सी अच्छी बात है।
1: बात अच्छे बुरे की नहीं है समय की है। घर में दो दिन से चूल्हा जला नहीं और तुम भी कुछ खाए नहीं हो। सारे होती तो

0: अरे बाबा, सारे हमेशा यहाँ थोड़े ही रहेगी।
1: बीमारी में भी देखने नहीं आएगी क्या? इतनी बदल गई मेरी बेटी कि माँ को देखने की भी फुर्सत नहीं उसके पास।
0: अरे ऐसा क्यों कहती हो फाता?
1: अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के इतने दिनों में मिलने क्यों नहीं आई?
0: शादी के बाद बेटी का घर ससुराल ही होता है, और सारे कहीं रहे, खुश रहे, और क्या चाहिए हमें?
1: तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या?
0: जाऊंगा, बाजार भी जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है।
1: एक बात कहूं?
0: हाँ कहो, क्या बात है?
1: सारे को बुला लेते। आखिर बेटी है हमारी, उसका चेहरा देख लेती तो शायद मन कुछ हल्का हो जाता।
0: बाजार जा ही रहा हूँ, कोई उधर मिल गया तो करीम भाई को संदेशा भिजवा दूंगा कि सारे को कुछ दिनों के लिए भेज दें।
1: करीम भाई कोई दूर तो रहते नहीं, तुम ही चले जाना।
0: देखूंगा, समय बचा तो जाऊंगा।
1: अरे नहीं जाओगे तो सारे को वे लोग नहीं आने देंगे।
0: करीम भाई कोई गैर तो नहीं कि सारे को नहीं आने देंगे? अरे तुम नाहक ही परेशान रहती हो।
1: मैं बेकार की परेशान नहीं होती। करीम भाई सारे को नहीं आने देंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे।
0: अरे उन्हें बहाना बनाने की क्या जरूरत है? सारे हमारी बेटी है, क्यों रोकेंगे उसे?
1: तुम जो कहो, मैं जानती नहीं क्या कि शादी के इतने दिनों तक ना आने दिया उसे, तो अब क्यों आने देंगे?
0: अरे बेगम, तुम तो परेशान हो जाती हो। अरे परेशान ना हो, आराम करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मैं संदेशा भिजवा दूंगा।
1: ठीक है, जैसा बेहतर समझो।
0: अच्छा, मैं जाता हूं बाजार।

0: अरे करीम भाई, चलो अच्छा हुआ यहाँ बाजार में ही मुलाकात हो गई। सलाम करीम भाई।
1: अरे अरे हसन भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, सुनाइए कैसे हैं?
0: अल्लाह का रहमो करम है, सब ठीक है।
1: लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
0: करीम भाई, परेशानी तो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है।
1: ओहो, अरे भाई कुछ बताएंगे भी, आखिर बात क्या है?
0: अब क्या बताऊं, फाता बीमार है 2 दिनों से।
1: हा?
0: बुखार उतर ही नहीं रहा।
1: अरे अरे, ओहो, तो भाई किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं?
0: दवा लाकर दी है।
1: हा?
0: हकीम जी कह रहे थे दवा जल्द असर करेगी।
1: अरे भाई, मौसम का भी असर होता है भाई। अल्लाह से दुआ करूंगा फाता बहन जल्द ठीक हो।
0: करीम भाई, फाता की इच्छा है
1: क्या
0: कि सारे कुछ दिन उसके पास आकर रहे, जिससे उसका मन कुछ हल्का हो जाए।
1: अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई, मैं आज ही मुश्ताक के साथ सारे को भेज दूंगा।
0: बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
1: ओहो, कैसी

0: बात कर रहे हैं हसन भाई? अरे सारे हमारी बहू है तो आपकी बेटी पहले है, और भाई उस पर आप लोगों का भी हक है।
1: लेकिन सारे के आने से आप लोगों को भी तकलीफ होगी।
0: अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, भला सारे अपने घर से अपने घर ही तो जा रही है, और शादी के बाद वहां जाना भी नहीं हुआ। अब फाता बहन की इच्छा हो रही है और भाई तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में सारे का अपनी अम्मी के पास होना तो जरूरी भी है। अच्छा तो अब मैं चलूंगा, आपको भी देर हो रही होगी और फाता अकेली होगी।
1: अरे नहीं नहीं, अरे रुकिए, एक एक कप चाय तो पी लें, बैठिए। अरे भाई दो कप चाय देना।
0: हाँ भाई हसन भाई, तो अब काम कैसा चल रहा है अभी?
1: बाजार तो ठीक है, लेकिन काम आए तो ठीक, मगर अभी तो बिना काम के कई कई रोज गुजर जाते हैं। इसी तरह रहा तो रोजगार ही बदलना पड़ेगा।
0: अरे अरे ऐसी क्या बात है, और भाई कसीदाकारी के कपड़ों की तो अच्छी मांग है बाजार में, और सरकार भी तो मदद देती है।
1: आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकारी माहौल बदल रहा है, हम जैसे लोग भी रोजगार चला पाएंगे क्या?
0: आप भी
1: अरे पहले की बात और थी, लोग बाहर से आते थे और वही लोग हाथों के बने कपड़े खरीदते थे। अरे अब तो उनका आना भी कम हो गया है।
0: अब हम सो तो है भाई, लेकिन हाथ की कारीगरी तो उन्हीं पर टिकी है, और जब वो नहीं तो काम नहीं। सही कहते हो, पर हाँ अब सरकार भी पहल कर रही है, देखना कुछ समय में फिर वही पुराना जैसा माहौल आ जाएगा। और भाई अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो वक्त जल्दी आए। हाँ
1: आमीन।
0: अच्छा भाई, तो हसन भाई अब मैं चलता हूँ, वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा।
1: अच्छा सारे को भेजना ना भूलिएगा।
0: अरे नहीं नहीं नहीं भूलूंगा भाई, आज ही मुश्ताक के साथ भेजूंगा उसे। हाँ
1: अच्छा, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।

0: सारे।
1: अरे आ गए आप? हाँ। मैं अभी चाय बना देती हूँ।
0: मैं जरा मुँह हाथ धो लूँ।
1: चाय के साथ रोटी ला दूँ?
0: नहीं, सिर्फ चाय ही दे दो, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा।
1: क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
0: हाँ, तबीयत तो ठीक है।
1: फिर परेशान क्यों लग रहे हैं?
0: कुछ नहीं सारे, बस काम का बोझ है और कुछ नहीं।
1: तो इतना काम ही क्यों करते हो जो परेशान रहो?
0: सारे, जिंदगी में पैसे का बहुत मोल है और पैसा आराम से कभी किसी को नहीं मिलता। अब पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
1: वो तो ठीक है, पर पैसे से खुशी किसे मिली है भला?
0: सारे, पैसे से खुशी ना मिली हो पर ये अच्छा तरीका तो जरूर है, और आज इसी की कीमत है। जिसके पास पैसा है वो खुशी के तमाम पल खरीद सकता है।
1: देखो जी, ऐसी खुशी मुझे तो नहीं चाहिए जिससे आप अपने आप को गला लें।
0: सारे, तुम्हें नहीं चाहिए पर वो सारी खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
1: अच्छा छोड़ो ये बातें, चाय पी लो और कुछ आराम कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप अपनी सेहत को ही भूल जाएं।
0: ठीक है सारे। अच्छा, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा।
1: अम्मी पड़ोस में गई हैं और अब्बा बाजार गए हैं, कुछ जरूरी काम था, आते ही होंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: लो अब्बा आ गए शायद, देखो तो जरा।
0: हाँ देखता हूँ। अरे अब्बू।
2: कौन मुश्ता?

0: आगे काम से?
1: हाँ अब्बू। अब्बू आप बाजार गए थे?
0: हाँ हाँ भाई, वो कुछ जरूरी काम था। तुम्हारी अम्मी कहाँ है?
1: अब्बू अम्मी तो पड़ोस में गई हैं, आती ही होंगी।
0: और वो सारे कहाँ हैं?
1: सारे रसोई में खाना बना रही है, आप चाय लेंगे?
0: बनी हो तो दे दो।
1: सारे अब्बू के लिए चाय लेती आना, मैं भी यही चाय ले लूंगा।
0: हाँ, काम से कब लौटे बेटा?
1: बस अब्बू अभी थोड़ी देर हुई है। और बाजार में क्या हुआ अब्बू?
0: काम तो हो गया। और हाँ, वो सुनो, वो सारे के अब्बा मिले थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, सारे को कुछ दिनों के लिए बुलाया है। देखो भाई, हो सके तो तुम भी साथ चले जाना।
1: नहीं अब्बू, मेरे पास समय नहीं है। और ऐसे भी क्या बात है अभी?
0: अरे अरे मुश्ताक भाई, वो फाता की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, दो दिनों से बुखार है और सारे को देखने की रट लगाए रखी है।
1: अब्बू इस समय सारे का जाना मुमकिन है क्या? मेरे पास वक्त नहीं है।
2: मुश्ताक बेटा, कहाँ जाने की बात हो रही है?
0: अरे बेगम, वो हसन मियाँ मिले थे आज बाजार में। उन्होंने बताया कि फाता बीमार है और सारे को बुलाया है।
2: अरे तब तो सारे को जाना ही चाहिए।
0: अरे भाई, लेकिन मुश्ताक कह रहा है उसके पास वक्त नहीं है वहां जाने का।
2: वक्त नहीं है? ये क्या बात हुई भला? तो क्या बहू अकेली जाएगी यहाँ से? अरे लोग क्या कहेंगे, सारे है कहाँ?
1: अम्मी वो रसोई में है।
2: जा सारे को बोल तैयार हो ले, और तू भी उसके साथ चला जा, शायद किसी की जरूरत पड़े वहां।
1: ठीक है अम्मी, बेहतर है।
0: और सुनो, वो मैं गाड़ी वाले को बोल आता हूँ, दोनों को छोड़ आएगा।
2: हाँ, सारे को बोल तैयार हो ले, रसोई मैं बना देती हूँ।
1: जी। सारे, सारे।
3: जी।
1: जरा इधर आना।
3: आई।
2: जी कहिए।
1: तुम्हारी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, सो हमें जाना होगा।
2: क्या क्या हुआ मेरी अम्मी को?
1: घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। तुम अपने जरूरत के दो चार कपड़े ले लो, अब्बा अभी गाड़ी लाने गए हैं।
2: अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या?
1: अरे नहीं, तुम बेकार में ही इतना घबरा रही हो। तुम्हारे अब्बा बाजार में मिले थे, उन्होंने ही मेरे अब्बा से कहा है, सब ठीक है। तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखना चाहती है।
2: तो अम्मी से जाने को पूछ तो लेते।
1: हाँ हाँ, बात हो गई है और मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अब जल्दी तैयार भी हो लो, नहीं तो देर हो जाएगी। अंधेरा होने से पहले पहुँच जाए तो ठीक होगा।
2: हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार हो लेती हूँ। आप भी अपने कपड़े ले लीजिए।
1: अब मेरे कपड़े रहने दो।
2: क्यों?
1: तुम्हें छोड़ मैं उसी गाड़ी से वापस आ जाऊंगा।
2: इतने दिनों बाद जाओगे तो रहोगे नहीं क्या?
1: नहीं, काम बहुत है, वैसे वहां जाने पर देखा जाएगा।
2: ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस एक थैले में दो चार कपड़े ही तो रखने हैं।

0: देख तो कौन आया है।
1: अम्मी अम्मी
2: कौन सारे? आ बेटी बैठ मेरे पास।
1: कैसी हो अम्मी?
2: जिंदा हूँ बस, दो दिन से बुखार शरीर को तोड़े जा रहा है, अब तो लगता है उठ भी नहीं पाऊंगी।
1: ऐसा क्यों कहती हो अम्मी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
2: यकीन नहीं होता।
1: यकीन करो।

0: अम्मी, तुम ठीक हो जाओगी। मामूली सा बुखार ही तो है, दवा लेने से ठीक हो जाएगा।
1: मुश्ताक भी आया है क्या?
0: हाँ अम्मी, वो भी आए हैं।
1: मुश्ताक आया है तो अभी रहेगा ना, कुछ बना ले। ऐसा कर, उससे पूछ ले क्या खाएगा, वही बना लेना।
0: अम्मी, मुश्ताक तो यहाँ शायद ना रहें, उनका काम बढ़ गया है और मौसम भी ठीक है, काम में ज़ाया करने से बहुत नुकसान हो जाएगा।
1: अच्छा, मुश्ताक के लिए चाय बना दे।
0: जी अम्मी, अभी बना देती हूँ।
1: बेटी मैके आती है तो आराम पाती है, पर एक मैं हूँ जो बेटी के पहले मैके वापसी पर भी उसी से काम करा रही हूँ।
0: अम्मी, ऐसा क्यों सोचती हो? क्या अब ये मेरा घर नहीं रहा कि मैं यहाँ कुछ काम ना करूं?
1: तू माँ का दर्द नहीं समझ सकती, तू तो वहाँ भी दिन रात काम करती रहती होगी, यहाँ आई तो भी काम करना पड़ रहा है, ये अच्छा तो नहीं लगता बेटी।
0: अम्मी, तू भी क्या कहती है, पहले तू ठीक हो जा, फिर मैं आराम से कुछ दिन तेरे पास रह लूंगी।
1: मुश्ताक मानेगा क्या?
0: पहले तू ठीक तो हो जा, फिर देखूंगी।
1: अच्छा, जरा पानी तो पिला दे बिटिया।
0: हाँ, अभी देती हूँ।
1: अब तो एक गिलास पानी भी पिलाने वाला नहीं है कोई।
0: अम्मी, लो पानी।
1: दे बेटी।
0: अम्मी, तू बेकार की बात सोच सोच कर परेशान क्यों होती है? अब मैं आ गई हूं ना, अब तू जल्दी से ठीक हो जाएगी।
1: तू एक माँ की बात नहीं समझ पाएगी सारे। मेरी बच्ची, अभी तो छोटी है, ये दुनियादारी की बातें तेरी समझ से दूर हैं।
0: ये क्या कह रही हो अम्मी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तू आराम कर, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ और देखती हूँ कि खाने में क्या बन सकता है।
1: अच्छा, मुश्ताक अगर अभी जाएगा तो जल्दी में जो हो सके वही बना ले।
0: ठीक है अम्मी, तुम फिक्र मत करो।
1: सारे?
0: हाँ अम्मी, कहो।
1: बेटी तो खुश तो है ना मुश्ताक के साथ?
0: तू ये क्यों पूछ रही है अम्मी? मैं खुश हूँ।
1: नहीं, वैसे ही करीम और फजी कैसे व्यवहार करते हैं?
0: बहुत प्यार है उन्हें मुझसे।
1: हाँ भाई, आखिर क्यों ना हो, तू सुबह से रात तक मजदूर की तरह कमर तोड़ मेहनत जो करती है, कोई मजदूर भी इतनी मेहनत ना करे। और तू?
0: अम्मी, तू भी कैसी बातें करती है, वो मेरा घर है और मैं काम ना करूंगी तो भला कौन करेगा?
1: तू तो कुछ समझती ही नहीं, वे लोग तुम्हें नौकरानी बना कर रखे हुए हैं और तू खुश हो रही है कि वो तेरा अपना घर है।
0: अम्मी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, तू नाहक ही परेशान हुए जा रही है।
1: अरे सारे, तू ना उस घर गई होती तो क्या मुश्ताक कभी इतना कमा पाता? अरे वो तो तेरी किस्मत है कि तेरी दुआ से मुश्ताक कमा रहा है, और जिसके आमदनी पर तुम्हारा हक होना चाहिए उस पर करीम और फजी राज कर रहे हैं, और तुम नौकरानी की तरह दिन रात मेहनत करती हो।
0: अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? करीम और फजी कोई गैर तो नहीं कि वो मुश्ताक के पैसे को खर्च ना कर सके? आखिर वो मुश्ताक के माँ बाप हैं।
1: अरे तू ठहरी भोली भाली, पर करीम और फजी को तो शर्म मानी चाहिए जो बेटे के पैसों से ऐश करते हैं और बहू को नौकरानी बनाकर रखा है, और तू उन्हीं लोगों की

0: तरफदारी किए जा रही है।
1: अम्मी ऐसा ना कहा करो, अब तो वही मेरा घर है और मुश्ताक मेरा शौहर है। वो जैसी भी रखेगा मैं वैसी ही रह लूंगी अम्मी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि करीम और फजी मेरे साथ गलत सुलूक कर रहे हैं।
0: अरे बिटिया सारे, तुम जो भी कहो पर मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे भले की कहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के बाद करीम व फजी ने क्या एक बार भी तुम्हें आने ना दिया होता? क्योंकि वो चाहते हैं कि तू अपने माँ बाप को भूल जा और उनके घर नौकरानी बनकर रह।
1: अम्मी
0: मुश्ताक कमाता है पर आज तक तुम्हें क्या दिया? काम करो तो दो रोटी कोई भी दे दे, पर क्या परिवार ऐसा होता है? जरा सोचो, आज अगर तुम यहाँ होती या मुश्ताक के साथ अलग होती बिटिया, तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा ना होते? तुम्हारे पास ऐशो आराम होता और तुम खुश होती। मुश्ताक भी तुम्हें प्यार नहीं करता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें उस नरक से निकाल कर अलग कहीं रखता जहां तुम खुश होती।
1: अम्मी, अम्मी मुश्ताक मुझसे प्यार करता है, तू ऐसा मुझसे ना कहा कर अम्मी। और मुश्ताक का घर कोई नरक तो नहीं जो मैं वहां खुश नहीं हूं?
0: अरे जाने दे सारे, हर मर्द एक जैसा तो होता नहीं, पर होता तो मर्द ही है। और औरत को हमेशा से दूसरे दर्जे का ही मानता रहा है, और मुश्ताक भी तो एक मर्द ही है। अगर वो ऐसा ना होता और तुमसे प्यार करता होता तो वह तुम्हें उस नरक से बाहर कहीं और घर लेकर रखता जहां तुम रानी की तरह रहती। सारे मेरी बात मान, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुश्ताक को कहो कि वो अलग मकान लेकर रहे या यहीं आ जाए, यहाँ घर की कमी तो नहीं?
1: नहीं अम्मी, मैं मुश्ताक के साथ ठीक हूँ, खुश हूँ। और अलग मकान लेकर रहने की क्या बात हुई भला? यहाँ आकर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकती।
2: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिंसकियां की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। न्यायालय ने कहा कि जमानत देते समय सत्र न्यायालय ने पीड़िता के परिवार के आरोपों को नजरअंदाज किया। ट्विशा के शरीर पर पाए गए कुछ घाव उनकी मृत्यु के पहले से थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 अथवा नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव 29 मई तक भेज सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारियां की जा रही है। हर गौशाला में कम से कम 5000 गौवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गायें होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के लिए देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रीन सिंहस्थ के तहत 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और IPL क्रिकेट में कर

महिला सभा सुनने वाली हमारी सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन उनके अपने महिला सभा कार्यक्रम में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी सखी रुबीना। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश का इतिहास बहुत समृद्धशाली और गौरवपूर्ण रहा है, जिसमें अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें आज भी याद किया जाए तो हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे अनेक आदर्श व्यक्तित्व हमारे देश में हुए हैं जिनकी चर्चा हमें आज भी रोमांचित कर देती है। ऐसे ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे वीर सावरकर, जिनका असली नाम था विनायक दामोदर सावरकर। वे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, कवि, ओजस्वी वक्ता थे। उनके वीरतापूर्ण कृत्यों की वजह से ही उन्हें उनके समर्थकों द्वारा वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई 1883 में ब्रिटिश भारत के बम्बई प्रेसिडेंसी में नासिक जिले के भागपुर गांव में हुआ था। जब वे 9 वर्ष के हुए तो उनकी माता और 16 वर्ष के हुए तो उनकी पिता का देहांत हो गया। दुख और कठिनाई के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और युवावस्था के साथ एक क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आए। बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में, जहां वे पढ़ाई भी करते थे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे और पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते थे, जिसमें उन्होंने प्रमाण सहित यह सिद्ध किया कि 1857 का संग्राम गदर नहीं बल्कि भारत की आज़ादी का प्रथम संग्राम था। इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की। लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के दौरान वहीं लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। उनके क्रांतिकारी कृत्यों के कारण उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और जब उन्हें जहाज के रास्ते भारत लाया जा रहा था तो वे सीवर होल के रास्ते भाग निकले। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और काला पानी की सजा मिलने पर सेलुलर जेल भेजा गया। यहाँ भी उनका आक्रोश उनकी कविताओं और लेख में स्पष्ट दिखाई देता रहा। सखियों, वीर सावरकर दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था और 10 वर्ष के बाद वे जेल से रिहा हुए। उन्होंने जाति भेद, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया और समाज सुधारक के रूप में उनका व्यक्तित्व सामने आया। देश प्रेम और भक्ति की भावना उनके द्वारा मराठी भाषा में लिखे साहित्य के 10,000 पन्नों में और अंग्रेजी भाषा के 1500 से अधिक लिखे पन्नों में स्पष्ट दिखाई देती है। सखियों, आपने एक पुरानी फिल्म काला पानी का नाम तो सुना ही होगा। वह फिल्म वीर सावरकर के व्यक्तित्व पर ही बनी थी। पोर्ट ब्लेयर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी वीर सावरकर के नाम पर ही रखा गया है। आज भी सावरकर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। आज़ाद भारत में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनकर कार्य करते रहे। उनका मानना था कि जब किसी व्यक्ति के जीवन का मिशन पूरा हो जाए और वह समाज के लिए और योगदान ना दे सके तो उसे अपनी शर्तों पर जीवन त्याग देना चाहिए। इसे उन्होंने

आत्मार्पण का नाम दिया। इस उद्देश्य से उन्होंने 1 फरवरी 1966 से उपवास शुरू कर दिया। 26 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण धीरे धीरे उनका शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया और 26 फरवरी 1966 को उनका देहांत हो गया। ऐसे साहसी ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं।

0: ए.आर. रहमान की आवाज़ में हमने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था स्वदेश। ऐसा कहा जाता है सखियों कि अच्छे पड़ोसी किस्मत से मिलते हैं। बात भी सही है, पड़ोस अच्छा हो तो जीवन की आधी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो क्यों ना पड़ोसी से सद्व्यवहार बना कर रखा जाए। आइए इसी बात पर सुनते हैं विधि गौतम से यह वार्ता। विषय है पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रखें।
1: नमस्कार, आज की वार्ता का विषय है पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रखें। आज के समय में एकल परिवार बहुतायत से मिलता है, किंतु कुछ समय पूर्व संयुक्त परिवार हुआ करते थे। उस समय पड़ोसियों की परिभाषा भिन्न हुआ करती थी। इस संबंध में मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी। आज से लगभग 4 दशक पूर्व जनसंख्या का आंकड़ा इतना विस्फोटक नहीं हुआ था तथा संयुक्त परिवारों का चलन थोड़ा बहुत बाकी था। उस समय के लोगों के पास जमीन जायदाद के रूप में बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। अधिकांशतः बड़े संयुक्त परिवारों के विभाजन में इन्हीं बड़े बड़े मकानों के बंटवारे हुआ करते थे और पड़ोसी के रूप में प्रायः पारिवारिक लोग और रिश्तेदार ही हुआ करते थे। उस समय के लोगों के पड़ोसी धर्म के रूप में पारिवारिक तथा सामाजिक मर्यादाएं जुड़ी रहती थी। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ सामाजिक मान्यताएं तथा परंपराएं भी बदलने लगी। स्थानीय उद्योग व्यापार तथा खेती किसानी के सीमित साधनों के चलते लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी अथवा व्यवसाय हेतु अन्यंत्र जाने लगे और किराए के आवास में रहने के कारण ऐसे लोगों के पड़ोस बदले, पड़ोसी बदले और उनके पड़ोसी धर्म में भी बदलाव आया। यही बदलता पड़ोसी धर्म सांस्कृतिक बदलाव का कारक भी बना। बढ़ती जनसंख्या ने ही छोटे बड़े शहरों में आवासीय समस्या के समाधान की दिशा में अपार्टमेंट कल्चर को जन्म दिया। इस बदले अपार्टमेंट कल्चर में पड़ोस और पड़ोसी धर्म की धारणाएं तथा मर्यादाएं भी बदल गईं। इस अपार्टमेंट कल्चर में पड़ोसियों से सद्व्यवहार जीवन को खुशनुमा और दुर्व्यवहार जिंदगी को खौफजदा बना देता है। अपार्टमेंट कल्चर में साफ सफाई, पानी तथा सुरक्षा हेतु चौकीदार आदि की व्यवस्थाएं सामूहिक रहती हैं। इसीलिए अपार्टमेंट के रहवासियों को चाहिए कि वे उदार मना सहयोगी और सहिष्णुता से पड़ोसियों से आपसी तालमेल बनाकर रहें, क्योंकि हर सुख दुख एवं विपत्ति के समय आपके दरवाजे पर पड़ोसी ही सबसे पहले खड़ा होने वाला रहता है। ऐसे समय आपका सद्व्यवहार ही काम आता है। सामान्यतः पड़ोस में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई नौकरी पेशा तो कोई व्यापारी अथवा उद्यमी। सभी की प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं अलग अलग रहती हैं। इनमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी तरह के लोग होते हैं, जिनके स्वभाव में भिन्नता भी रहती है। इन सभी लोगों के साथ सद्व्यवहार का स्वरूप भी कमोवेश बदल ही जाता है। जहां बच्चे पड़ोसियों से प्यार भरा व्यवहार चाहते हैं, तो बड़े और बुजुर्ग आदर भाव और सम्मान भरा व्यवहार चाहते हैं। यह कहावत भी सही है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य, जैसा व्यवहार आपका दूसरे लोगों से होगा वैसा ही व्यवहार आप उनसे पाएंगे। अब प्रश्न उठता है, सद्व्यवहार क्या होता है? इस पर भी विचार करना जरूरी है, जो सभी वर्ग और समुदाय पर लागू हो। सभी से संतुलित तथा मीठे बोल बोलना, किसी के भी प्रति विद्वेष अथवा नीचा दिखाने की भावना का न होना, पड़ोसियों के प्रति उचित सहयोग के लिए तत्पर रहना, किसी को भी अनुचित तथा अवैध एवं दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों से दूरी बनाए रखना, ये सभी सद्व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। आपका पड़ोसी आपका मित्र भी हो सकता है या फिर संबंधी। यदि नहीं तो मित्रवत अथवा संबंधी सदृश संबंध बनाए जा सकते हैं, जो कि औपचारिक संबंधों से ऊपर उठकर होते हैं, जिनमें गहराई रहती है। ऐसे संबंध उत्कृष्ट सद्व्यवहार की कोटि के माने जाते हैं। इस तरह के संबंधों में जरा सी चूक विग्रह का कारण बन सकती है। इस बात को सदैव ध्यान रखना आवश्यक है। छोटी छोटी सी भूल चूक की नज़रअंदाज करने में कोई कटुता की गुंजाइश नहीं रहती। इस तरह की बातें भी सद्व्यवहार की ही परिधि में आते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके सहकर्मी जो आपके अगल बगल या आमने सामने बैठकर कार्य करते हैं वे भी एक तरह से पड़ोसी ही कहलाते हैं, क्योंकि उनके बीच में आपका 8 से 10 घंटे का समय बीतता है। इसीलिए उनसे भी सद्व्यवहार करना आवश्यक है। सहकर्मियों के साथ सद्व्यवहार आपके कार्यस्थल के वातावरण को शांतिमय बनाता है। सहकर्मियों के बीच में सद्व्यवहार बना रहे इसके लिए आवश्यक है कि कार्यस्थल की वांछनीय गोपनीयता बनाए रखना, एक दूसरे सहकर्मी की शिकायत या चापलूसी करने से बचना, दूसरे के कामों में अनावश्यक दखल न देना, ये सभी बातें सहकर्मियों से सद्व्यवहार बनाए रखने में मददगार होती हैं और स्वयं तनाव मुक्त रह सकते हैं तथा अपना कार्य निष्पादन निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अब बात आती है जब पड़ोसी पारिवारिक या रिश्तेदार हो। ऐसे पड़ोसियों की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही होती हैं और संबंध भी संवेदनशील रहते हैं। ऐसे पड़ोसियों से सतर्क रहने की जरूरत है और उलझन भरे मामलों से दूरी बनाकर रहने में ही भलाई रहती है। किंतु रिश्तेदारी वाले पड़ोसियों से मान सम्मान वाले बर्ताव का निर्वहन भी जरूरी है। अब बात आती है जब पड़ोसी किसी और धर्म के अनुयायी हो। ऐसे पड़ोसियों से संबंध बेहतर रहें और उसके लिए चाहिए कि आप स्वयं अपने धर्म के आडंबर और हठ धर्मिता को स्थान न दें और पर धर्म अर्थात पड़ोसी के धर्म का सम्मान करें, साथ ही उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं पूरी करने दें और उनके धार्मिक उत्सवों पर अपनी शुभकामनाएं अवश्य दें, जिससे पड़ोसियों से धार्मिक सद्भाव सदा बना रहे। पड़ोसियों से कभी कभार पैसों का लेन देन भी करना पड़ता है। यह एक संवेदनशील मामला है, इसीलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसा पड़ोसी कैसा है, पैसों के लेन देन के मामले में पाक साफ है या नहीं। ऐसा पूरी तरह सोच विचार कर ही इस तरह के लेन देन को एक सीमा तक ही करना चाहिए। वैसे भी अपने आसपास के पड़ोसियों की पूरी जानकारी आपको रहना चाहिए कि आपका पड़ोसी कैसा है। यह जानकारी आप परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उनको इस बात की भनक नहीं लगना चाहिए कि आप उनके संबंध में पूरी जानकारी ले रहे हैं। पड़ोसी के विषय में जानकारी रहने पर आपको उससे कैसा बर्ताव करना है इसमें मदद मिलेगी। आपके पड़ोसी सभी तरह के हो सकते हैं, किंतु सद्व्यवहार एक सामान्य सी भाषा है जिसमें संतुलित एवं मीठे बोल सम्मान की भाषा के साथ बोले जाएं। यदि आपने यह मूल मंत्र अपने जेहन में उतार लिया है तो पड़ोसी आपके सद्व्यवहार के कायल तो रहेंगे ही, आप उनसे भी उचित सम्मान और सद्व्यवहार पाएंगे। धन्यवाद।
0: पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रखें, इस विषय पर हमने सुनी विधि गौतम से यह वार्ता। और आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में टशन फिल्म का ये गीत।

0: उम्मीद करते हैं सखियों आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अब दीजिए इजाजत अपनी सखी रुबीना को। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
2: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता। भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती।

0: support the world. Download Waves OTT app now and watch for free.
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब प्रस्तुत किया जा रहा है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के भेंट है। आज इसमें आप सुनेंगे रेवाराम मेहरा के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लोक भजन से।

रेवा राम मेहरा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये बारहमासी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की भेंट था। आकाशवाणी का ये मध्य प्रदेश प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे जबलपुर केंद्र के योगदान से सुनीति माहेश्वरी के स्वर में भजन। सबसे पहले सुनते हैं देशगान।

0: सुनीति महेश्वरी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भजन। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

आशा भोसले की ही आवाज़ में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है जीने की राह। इस गीत में आशा भोसले के साथ आप सुनेंगे उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाज़।

0: जीने की राह फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। यह अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौद्गल्यायन से संबंधित है। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: कहने के लिए नहीं, कहे देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूं अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले। अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया, 2 दिन का ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। दोनों शहरों में आज भी तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और रोजगार विभाग द्वारा कल युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया, और गुना में दिव्यांगजन जागरूकता, संवेदनशीलता एवं समावेशी अभिषण योजना विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
4: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
5: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी के शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
6: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
8: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
9: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
3: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
10: आज श्रीलंका में ईद उल अज़हा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइश को पूरी करने का वक्त आ गया है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं मृत्यु दंड फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत आनंद मिलिंद का है। इस गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। आप हैं दिल्ली से हमारे श्रोता कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ये हमें फरमाइश मिली है ओम प्रकाश नेमा, श्रीमती किरण नेमा, आकाश, विकास, नंदनी, शिवांश और समस्त नेवा परिवार की। और साथ ही साथ इस गीत की पसंद में हम शामिल कर रहे हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा का ये पत्र। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मृत्युदंड फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अमृत फिल्म से मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये हमारे श्रोता है अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता, सिद्धांत प्रिंस, एकांश सुखी और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली श्वेता, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर। साथ ही साथ इसकी फरमाइश हमें मिली है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा और इसी गीत को पसंद किया है। ग्राम धुरा बांधा पाठा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड साहू, रुस्तम साहू, नेतराम साहू और भूपेंद्र साहू ने।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंतर्गत, उसके लिए हमें फरमाइश मिली है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविर राही महराज जहां, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता प्रिंस सिद्धांत, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश सुमित और

ध्वनि, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, और इसी गीत को पसंद किया है धमनी छत्तीसगढ़ से समेलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर ने। आप सभी सुनना चाहते हैं अवतार फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। इसी गीत को पसंद किया है प्रमिलागंज आलोट जिला मध्य प्रदेश, रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। साथ ही साथ ये खत हमें मिला है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। और इसी गीत को पसंद किया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजदाबा खान और राउफ भाई, शाहिद भाई। इन सभी की पसंद पर प्यासा सावन फिल्म का ये गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में प्यासा सावन फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष भगवान बुद्ध के दो शिष्यों सारिपुत्र और मौद गल्यायन से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एफआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडिया व्यू पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडिया व्यू पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की भेंट है। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर और 9:30 पर। शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्राय

का ख्याल गायन राग होगा गोरख कल्याण। ये थी जानकारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, आपका स्वागत है। और कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे रेवा राम मेहरा के गाए लोक भजन बारामासी और दुजनिया। सबसे पहले सुनते हैं ये लोक भजन।

रेवाराम मेहरा के गाए इस लोक भजन के साथ ही अब आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुनीति माहेश्वरी की आवाज़ में कुछ भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विनीता महेश्वरी की गाई कुछ भजन और देशगान सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सबसे पहले सुनते हैं सांवरिया फिल्म का गीत शान की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है मोंटी ने।

ताल फिल्म का गीत आइए अब सुनते हैं अनुराधा श्रीराम सुजाता सोनू निगम और एआर रहमान की आवाजों में। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और तर्ज एआर रहमान की है।

AR रहमान और चिन्मयी की आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं गुलजार के लिखे बोल। गुरु फिल्म के लिए इसे शुरू से सजाया है AR रहमान ने।

तोची रैना और रेखा भारद्वाज की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत। प्रीतम के संगीत निर्देशन में इस गीत की रचना की है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: प्रीतम के संगीत निर्देशन में अभी आपने अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत सुना, जिसे गाया था तुची राय और रेखा भारद्वाज ने, और इस गीत को हमने लिया था ये जवानी है दीवानी से। इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज राजभवन में राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारों, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार किया। मशहूर शायर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। शायर जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सके। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मिघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। आप सुन रहे थे।

नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स,

0: ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुँचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफ़र से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
0: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए ज़रूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस ज़माने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोज़गार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बाकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए, तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF?
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्शन नहीं होती है, बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITPP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
0: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकारी एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुँचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह है बहुत खुशी के भाव थे। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफकोर्स मैं भी काफ़ी खुश था।
0: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, ऐसे सुखद बात और कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज़्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने।

थे, शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता सीआरपीएफ तक पहुंचने का इतना सहल

0: मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक
1: थे, शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता सीआरपीएफ तक पहुंचने का इतना सहल?
0: बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट एक
1: अलग
0: अलग
1: तरह से
0: अलग
1: निखर
0: अलग
1: कर आता
0: तरीके
1: है।
0: का निखर कर आता है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था वो मुझे बहुत हैंडी रहा। सीआरपीएफ में भी यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: एडिशनल
0: अपने
1: तैयारी जैसे बच्चे
0: हाँ
1: अक्सर
0: बहुत
1: करते हैं कई
0: मशक्कत नहीं
1: फोर्सेस
0: करनी
1: ज्वाइन
0: पड़ी।
1: करने से
0: उसके
1: पहले।
0: बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो। तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी
0: जी
1: जी तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी जी जी
1: जी तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आतुर हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके, कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था। और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो CRPF उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन, रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो CRPF के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। CRPF एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। CRPF को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। CRPF को 1 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, CRPF के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि CRPF को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती हैं।
0: जी निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं CRPF ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए। तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है। और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए सीआरपीएफ में अब हमारा चूँकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
0: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेजों के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना।
1: क्या निसंदेह।
0: तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडर अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन CRPF में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको CRPF ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो CRPF का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उस समय बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा CRPF की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और CRPF ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें CRPF की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और CRPF ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौक़ों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफ़र डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और CRPF ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो CRPF का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो CRPF आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी CRPF के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो CRPF एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा CRPF का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाना चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
0: वाह क्या
1: बात। तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
0: वाह क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
1: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है।
0: जी एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है, सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज़्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी, ये कहूँगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
1: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
0: बात है 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
1: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
0: क्या बात है। चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
1: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उस उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
0: वाह क्या बात है। जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है, क्या ऐसा होता है?
1: बिल्कुल, रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में, एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड, तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी।
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
0: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत, बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज़ जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्य निष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं, और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वह अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: मैं, आप मुझे टाइम ट्रैवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूँगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूँगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियाँ मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से। और कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं, जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, कोई नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: हाँ। तो
0: हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीत माला लेकर आते थे।
0: हाँ।
1: और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे।
0: हाँ।
1: और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतज़ार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या
0: हाँ।
1: गोल्डन वॉयस थी उनकी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए।
0: बिल्कुल जी। और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियाँ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने।
0: बिल्कुल।
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में ज़रूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को ज़रूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
1: निसंदेह।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूँगी अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
1: धन्यवाद। जय हिंद।
0: जय हिंद।

0: मीडियम वेव 186.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5 बज चुके हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारों, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। और भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मेघारा में शुरू होने वाले अंडर-18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवा श्रोता सुने उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: वर्धक, प्रेरणादायक और युवाओं के लिए बेहद खास।
1: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दो प्रश्न पूछकर, जिनके उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहला एल्गी ट्री कहाँ लगाया गया है?
0: और आज का दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी दी थी? दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म अंग्रेजी मीडियम से और जिसे गाया है विशाल डादलानी और सचिन जिगर ने।

0: दोस्तों, आज का दौर सूचना और अभिव्यक्ति का दौर है। हर तस्वीर अपने भीतर एक कहानी छुपाए रहती है और उन्हीं कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने का काम करता है फोटो जर्नलिज्म।
1: जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी पहली चर्चा का विषय है फोटो जर्नलिज्म, तस्वीरों के माध्यम से सच और समाज की अभिव्यक्ति। तो आयुषी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताते हैं कि आखिर फोटो जर्नलिज्म है क्या।
0: बिल्कुल आद्या, फोटो जर्नलिज्म पत्रकारिता की वह विधा है जिसमें तस्वीरों के माध्यम से समाचार, घटनाएं और भावनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। एक प्रभावशाली तस्वीर कई बार हजार शब्दों से ज्यादा असर छोड़ देती है।
1: सही कहा आयुषी, कई बार हमने देखा है कि किसी प्राकृतिक आपदा, युद्ध, खेल या सामाजिक घटना की तस्वीरें लोगों के दिलों को सीधे छू जाती हैं।
0: जी हाँ, क्योंकि तस्वीरें केवल दृश्य नहीं दिखाती बल्कि उस समय की भावना और सच्चाई को भी सामने लाती है। इसी वजह से फोटोजर्नलिस्ट समाज की आंखों और आवाज माने जाते हैं।
1: लेकिन आयुषी, फोटो जर्नलिज्म की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है ना?
0: बिल्कुल आद्या, एक फोटो जर्नलिस्ट को सच्चाई, संवेदनशीलता और नैतिकता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तस्वीरों को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि वे सही संदेश और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं।
1: आयुषी, आज सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति मोबाइल से तस्वीरें ले सकता है, ऐसे में प्रोफेशनल फोटो जर्नलिज्म की क्या खासियत रह जाती है?
0: आद्या, प्रोफेशनल फोटो जर्नलिस्ट केवल तस्वीर नहीं लेते बल्कि सही समय, सही एंगल और घटना की सच्चाई को समझकर प्रस्तुत करते हैं। उनकी तस्वीरें समाज को जागरूक करने और सोच बदलने की ताकत रखती है।
1: वाकई फोटो

0: जर्नलिज्म केवल कैमरे का काम नहीं बल्कि संवेदनशील सोच और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी माध्यम है।
1: दोस्तों अब सुनते हैं कार्यक्रम के दूसरे गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म धड़क 2 से और जिसके गायक हैं दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली।

0: दोस्तों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब समय है एक विशेष वार्ता का, जिसका विषय है भारत में युवा और सतत विकास। आज के दौर में युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों और अवसरों को भी सुरक्षित रखे। तो आइए इन्हीं महत्वपूर्ण विचारों पर प्रकाश डालने के लिए सुनते हैं ये वार्ता भारत में युवा और सतत विकास, और वार्ताकार है कौशलेंद्र चंद्र जैन।
2: प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत में युवा और सतत विकास। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमारे युवा केवल रोजगार की तलाश में हैं या वे देश और पृथ्वी के भविष्य को भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? यहीं से शुरू होती है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। सतत विकास क्या है? सतत विकास का सरल अर्थ है ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को पूरा करे लेकिन

0: आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। यह शब्द पहली बार वैश्विक स्तर पर 1987 में चर्चित हुआ जब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इसे स्पष्ट किया गया। आज पूरी दुनिया 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य पर काम कर रही है। भारत भी इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के युवा एक जनसांख्यिकीय शक्ति। भारत में आज करोड़ों युवा हैं, गांवों में, शहरों में, कॉलेजों में, स्टार्टअप में, खेती में और तकनीक में। अगर यही युवा सही दिशा में काम करें तो भारत न केवल आर्थिक शक्ति बन सकता है बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक उदाहरण बन सकता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कथन है, युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका। आज भारत जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनमें शामिल है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक कचरा और जलवायु परिवर्तन। यह समस्याएं केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। युवा क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, केवल पौधारोपण नहीं बल्कि उसे बड़ा होने तक संभालना, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार, कपड़े के बैग, स्टील की बोतलें, पर्यावरण मित्र का उत्पादन करना, जल संरक्षण, घर में टपकते नल ठीक करना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग, इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। जल संरक्षण युवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी। भारत के कई हिस्सों में जल संकट गंभीर होता जा रहा है। कई युवा समूह गांवों में तालाबों की सफाई, वर्षा जल संचयन और जल जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अगर युवा आगे आए तो गांव आत्मनिर्भर बन सकते हैं, खेती सुधर सकती है, पलायन कम हो सकता है। जल बचाना केवल पर्यावरण नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता। भारत में रोजाना हजारों टन कचरा निकलता है। अगर युवा आगे बढ़ें और गीले और सूखे कचरे को अलग करें, घरों में कंपोस्ट बनाएं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें तो शहर और गांव दोनों स्वच्छ हो सकते हैं। स्वच्छता केवल सफाई नहीं है, यह स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ी हुई है। नवीकरण ऊर्जा और स्टार्टअप संस्कृति। भारत में आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में बड़े अवसर हैं। कई युवा सौर पैनल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक वाहन, बायोगैस प्लांट जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। इससे तीन लाभ होते हैं, रोजगार सृजन, प्रदूषण में कमी, ऊर्जा आत्मनिर्भरता। सतत कृषि और ग्रामीण युवा। भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर ग्रामीण युवा जैविक खेती अपनाएं, कम रसायनों का उपयोग करें और जल संरक्षण तकनीक अपनाएं तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। भारत कृषि भविष्य की आवश्यकता है। तकनीक और डिजिटल जागरूकता। आज का युवा डिजिटल है। सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण अभियान चलाए जा सकते हैं, जागरूकता फैलाई जा सकती है, गलत जानकारी का विरोध किया जा सकता है। तकनीक अगर सही दिशा में उपयोग हो तो वह परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। शिक्षा और मूल्य आधारित सोच। सतत विकास केवल तकनीक से नहीं आएगा बल्कि सोच से आएगा। स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा, नैतिक मूल्य, सामुदायिक सेवा, इनका समावेश जरूरी है। भारत की वैश्विक भूमिका और युवा। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है, लेकिन केवल सरकार के प्रयास काफी नहीं है। जब भारत का हर युवा यह सोच ले कि मैं पृथ्वी का संरक्षक हूं, तभी वास्तविक परिवर्तन आएगा। व्यक्तिगत जीवन में छोटे बदलाव। सतत विकास बड़े भाषणों से नहीं, छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे बिजली बचाना, पानी बचाना, स्थानीय उत्पाद खरीदना, भोजन की बर्बादी रोकना, पेड़ लगाना इत्यादि। हर युवा अगर अपने जीवन में 5 बदलाव करे तो देश बदल सकता है। इन सभी के लिए युवाओं का स्वस्थ होना आवश्यक है, अतः उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वस्थ युवा ही राष्ट्र निर्माण कर सकता है। योग, व्यायाम, नशा मुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, स्वास्थ्य ही धन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। एक सुंदर पंक्ति है, धरती हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यही सतत विकास का मूल संदेश है। प्रिय श्रोताओं, भारत का भविष्य केवल सरकार की योजनाओं से नहीं बनेगा, भारत का भविष्य बनेगा जागरूक श्रोताओं से, जिम्मेदार नागरिकों से, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज से। आज का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला व्यक्ति नहीं है, वह परिवर्तन का वाहक है, वह समाधान का निर्माता है। अगर भारत का युवा सतत विकास को अपना लक्ष्य बना ले तो 2047 तक, जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब भारत केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि पर्यावरणीय महाशक्ति भी होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, मैं सतत जीवन जीऊंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे वार्ता भारत में युवा और सतत विकास, और वार्ताकार थे कौशलेंद्र चंद्र जैन।
2: साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से और जिसे गाया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने।

0: दोस्तों, हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं मिलकर हमारी पहचान बनाती हैं। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ दोस्तों, और हमारी अगली चर्चा का विषय है अल्पसंख्यक कल्याण में युवाओं की भूमिका।
1: आद्या, कई बार समाज के कुछ वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की कमी के कारण मुख्य धारा से पीछे रह जाते हैं। ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
0: आज का युवा जागरूक है, शिक्षित है और तकनीक से जुड़ा हुआ है। अगर युवा चाहे तो ये समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल आद्या, युवा शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। जरूरतमंद बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं, डिजिटल साक्षरता फैला सकते हैं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर सकते हैं।
0: सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार योजनाएं और शिक्षा सहायता कार्यक्रम।
1: लेकिन जानकारी की कमी के कारण बहुत से लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में हम युवा एक माध्यम बन सकते हैं जो सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाए।
0: और आज सोशल मीडिया का दौर है और अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो ये समाज में सकारात्मक सोच और भाईचारे का संदेश फैलाने का सबसे मजबूत माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल आद्या, युवाओं को चाहिए कि वे नफरत और भेदभाव फैलाने वाली बातों से दूर रहें और एकता, समानता और सद्भाव का संदेश दें।
0: जब समाज का हर वर्ग आगे बढ़ेगा तभी देश मजबूत बनेगा।
1: और इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है हम युवा, क्योंकि युवाओं में नई सोच है, नई ऊर्जा है और समाज को बदलने का जज्बा है।
0: तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे।
1: दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम के अगले गीत का, जिसे हमने लिया है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और जिसे आवाज दी है सचिन जिकर, राघव चैतन्य और वरुण जैन ने।

0: दोस्तों अब वक्त है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, भारत में पहला एल्गी ट्री कहाँ लगाया गया है? इसका सही उत्तर है भोपाल।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि जनवरी 2026 में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी दी है? जिसका सही उत्तर है राजस्थान। तो दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त आद्या नायक
0: और आयुषी द्विवेदी को। फिर मिलेंगे नए विषय और नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, पहला गीत बरसात की एक रात फिल्म का, आवाज़ लता मंगेशकर की, साहिर का गीत और रोशन का संगीत।

और अब सुनिए अलग अलग फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और यशदास की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का गीत और आर डी वर्मन का संगीत।

अगला गीत दाता एक ग्राम फिल्म से हरिओम शरण की आवाज में, गीत हरिओम शरण का और मुरली मनोहर स्वरूप का संगीत।

जिस रस्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग

और अब सुनिए मिलन फिल्म का ये नगमा मुकेश की आवाज़ में, आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:55 हुए हैं। वक्त है अंतराल का।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारों, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार किया। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। और भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामेघारा में शुरू होने वाले अंडर-18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
1: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
2: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के

0: बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है, कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
0: जी।
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
1: जी।
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखू तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखू तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह।
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं,
7: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
8: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
6: माँ, और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
6: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
9: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
10: जी साहब, जी साहब,
9: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
10: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया। और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमले।

0: राजेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एक विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज दोपहर मशहूर शायर बद्र साहब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे संग्रहालय से प्राप्त रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज हम आपको सुनवा रहे हैं काफी समय पूर्व शायर बद्र साहब से ली गई एक भेंट वार्ता।
5: डॉक्टर साहब, बीते हुए वर्ष में जो कुछ आपने महसूस किया है, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगा, जो कुछ सपने संजोए थे बीते वर्ष के लिए, क्या फलित हुए?
6: कुल मिला करके तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा पॉजिटिव और होपफुल दुनिया नजर आती है, और पहले से ज्यादा खूबसूरत और रहने लायक होती जा रही है। लेकिन फिराक साहब का एक शेर है कि देख रफ्तार इनकलाब फिराक कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। तो दुनिया जिस तरह से खूबसूरत हो रही है, बन रही है, और हर शख्स को किया जाए, वो इतना अंदरूनी जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे से कहा जाए कि 99 अच्छा था कि 2000 अच्छा था, 2000 जितना अच्छा था उतना 2000

0: सब आते हैं, लेकिन वो अगर शायद मेरी आंख से देखा जाए तो जो इम्तिहान आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, वो इतनी नेचुरल हैं कि उनसे प्यार करने को जी चाहता है। कई बहुत बड़े बुरे हादसे हमारे यहाँ हुए, लेकिन अगर आप उसे सोचें कि अगर वो कामयाब हो जाते, जैसे हमारे पार्लियामेंट पे जो हमला था, वो कितने कम नुकसान में कितना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, इस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इस तरह और बहुत सी बातें हुई। मैं हिंदुस्तान से बाहर दो बार गया, मिडिल ईस्ट रहा, अभी दो महीने में अमेरिका रहा। वहाँ छोटी छोटी हरकतें दूसरे दोस्तों की, आपका इशारा, जैसे उर्दू तो जानते हैं आप, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, तो उस लिहाज से कुल मिला के मुझे बज़ाहिर तो वहाँ लगा कि कहीं स्ट्रगल है, लेकिन कुल मिला करके मुझे लगा कि हमारी हैसियत, मेरी हैसियत, और अभी तक मेरा ज़ाती में तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी से पूरा हिंदुस्तान देखता हूँ, वो धीरे धीरे जो चावल चावल ग्रो कर रहा है, वो खूबसूरत हो रहा है, उस पर मुझे तो कोई ज़िंदगी से शिकवा नहीं न वक्त से।
1: आने वाले वर्ष में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए?
0: हाँ देखिए, मेरे साथ एकदम बिल्कुल, मैं मुझे अच्छा ये मौका है ये कहने का कि मुझे आज से 30-40 साल पहले जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था कि संस्कृत की सबसे आखिरी शक्ल उर्दू है और वो उर्दू लिपि में आप लिखें तो उर्दू है, अदरवाइज वो मतलब खड़ी बोली का ये नया रूप है, तो मैंने बहुत चौंक करके क्लास में अपने प्रोफेसरों से 30 बरस पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सुना था और कि क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि एक कामन आदमी की हैसियत से मुझे कभी इतनी बड़ी विरासत मिलने की खबर नहीं थी कि संस्कृत का सबसे नई शक्ल का मैं वारिस हूँ और मैं शायर हूँ और धीरे धीरे तो अब, और मैंने जब अपने वसीले से देखा तो जैसे मुझे गालिब और मीर लगे, तो मुझे वाकई लगा कि जितनी विरासत की हिफाजत जिसने की, चाहे जान के की और चाहे अपनी चालाकी में की, मैं तो अपनी चालाकी में करता हूँ, मतलब मैं शायरी करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हज़ारों इंसानों के दिल की के राज को मैं अपना अपना अपना राज बना लूँ, अपना प्यार बना लूँ। तो मुझे पता चला कि मुझसे ज़्यादा ही शायरी में हिंदी जानने वाला कोई नहीं है, लिखने में मुझसे ज़्यादा जाहिल कोई नहीं है, और इसी तरह से उर्दू में मैं बहुत अच्छी उर्दू लिख लेता हूँ, लेकिन उतनी अच्छी मुझे उर्दू नहीं आती। तो उसके लगा कि किताब से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो सच्ची है और एक कंटिन्यूएशन में है, एक सिलसिले में है, तो ये बहुत खुशगवार मुझे एक्सपीरियंस हुआ और उसका रिजल्ट भी बगैर किसी प्लानिंग के। देखिए, प्लानिंग तो मेरी बचपन से है कि मेरी उर्दू में किताब छपे, और पाकिस्तान में भी छपी हैं तो 6 छपी हैं, और 20 मैं अब यहीं से हिंदुस्तान से हिंदी लिपि में ख़रीद के लाता हूँ, और मामूली आदमियों के नहीं, ज़्यादातर वाणी प्रकाशन के होते हैं, और वाणी प्रकाशन का एक दुश्मन और है, वो जो राजपाल है, जो ये छाप दे तो वो नहीं छापता, तो उसने तो चुरा को छीन के, ये चुरा का लफ्ज बड़ा प्यार है मेरे तरफ से, कि उसने मेरे पर कितना बड़ा एहसान किया कि मतलब मैं वाणी के साथ एक तरह से कमिटेड हूँ, और लेकिन उन्होंने जो चुरा के छापा उससे बड़ा एहसान मेरे लिए को। तो इन चीज़ों को जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसको आप देखें कि मैं, इससे लगता है कि मैं बिल्कुल सही सिमत में, नेचर मेरा मुझे ग्रो करा रही है, और जाहिर है कि जब मैं इसका खानों में नहीं बढ़ना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 4-5 मेरी किताबें अनजान लोगों ने चुरा के हिंदी लिपि में छापी, जैसे धूप की पत्ती और हरा रिबन का आज तक मुझे पब्लिशर नहीं मिला, कौन है अच्छा, बाकी राजपाल साहब ने जो मेरी किताब छाई, उनमें मेरे दोस्त कन्हैयालाल नंदन को पकड़ लिया, उन्होंने 20-25 सफ़े का मेरे पर प्रीफेटरी नोट लिखा, और मेरा सारा बकौल हमारे जो दोस्त हैं अरुण महेश्वरी, कि यार वो तेरी तो सब उसका सोना सोना तो उसने छाट लिया, तुमने दे दिया, मैंने कहा दिया तो मैंने जबानी तो नहीं दिया है, लेकिन ये हुआ है तो ये नेचर का फैसला है, इसको कबूल करो यार। अच्छा हुआ कि कन्हैयालाल लंदन भी एक आध रोज नाराज रहे, क्योंकि मैं परमिशन नहीं दे रहा था, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कमिटेड हूँ अपने, लेकिन अंदर से मैं वाकई यही चाहता था, हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसकी पैसा वैसा कहाँ मिलता, हम लोगों मिले भी तो क्या करेंगे हम, अब इस नतीजे यहाँ तक भी खुदा का शुक्र हम पहुँच गए कि हम सोचने लगे कि पैसा हमारा क्या कर लेगा, मिलेगा तो क्या मेरा कर लेगा और नहीं मिलेगा तो मेरा क्या कर लेगा। तो मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी किताबें 5-6 लोगों ने छापी जो मेरी बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई लड़की को खूबसूरत लोग छेड़े और वो कह के नहीं नहीं मुझे तो बिला छेड़ा जा रहा, मेरी किताबें छपी, मेरे मेरे जो जिनसे मैं कमिटेड हूँ वानी उन्होंने मेरी खूब किताबें छापी और जिनसे मैं चाहता था कि काश कभी, मुझे याद है साहब एक दफ़ा मैं ले करके बचपन में पूरा गया था ये राजपाल वालों के पास, इन्होंने रखा रहे 4-6 महीने, फिर मैं एक दफ़ा गया कि मैं कनाडा जा रहा हूँ आप मेरी किताब छाप दीजिए, तो उन्होंने कहा लेते जाइए अभी जब तक आप 4 दफ़ा कनाडा हो आएंगे इन लोग के बाप वगैरह ने किया होगा, भाई गार्ड नहीं छापा था और उन्हीं ने जब इस तरह से चुरा करके 3 किताबें छापी, एक उसकी पाकिस्तान वाला जो है अहमद फराज की, एक 2 हम लोगों की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह लग रहा है कि सब कुछ कांटे के दरमियान से गुजर रहे हैं और फूल महफूज है, तो इससे बड़ी और क्या बात है। तो कांटे तो लाइफ है, वो तो उसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं। तो बार बार याद आता है कि हमारे साथ ये हुआ, हम संसद पे हमला हुआ, फलां हुआ, ये मर गया, इसको चोट आई, तो अगर और हर साल से मुकाबला करें तो कुछ बेहतरी हो रहा, कम से कम मेरे हैसियत में मेरे साथ तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ अभी भी मैं रहा। मैंने मुझे बहुत ज़्यादा आप अपना पर्सनल बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन कई दफ़ा मुझे लगा कि जो लोगों ने मेरे पाकिस्तानी दोस्तों ने झल्ला के कन्वीनर से कहा कि तुम भी पाकिस्तानी हम भी पाकिस्तानी, तो मगर उसकी मशहूरी थी कि भाई मशहूर और टिकट तो बशीरबत के नाम से बिक रहे थे, तो ये सब कुछ कुल मिला के अच्छा लगा।
1: एक आम आदमी की नज़र से आप आने वाले वर्ष को कैसा देखते हैं?
0: सबको होपफुल, जो मैं समझता हूँ कि अगर आदमी थोड़ा समझदार है और ये तो कि दुख सुख तो सबके साथ लगे रहते हैं, कोई अगर बीमार है इस वक्त, कोई किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई डिसअपॉइंटेड है, लेकिन कुल मिला के जनरल आप ये देखिए कि जो रहन सहन और आप 25 साल के अंदर जो चीज़ें सिर्फ बादशाहों के लिए थीं उससे भी ज़्यादा हमारे घर के एक छोटे से मुलाजिम के लिए ज़िंदगी मेहरबान हो गई, वो सब चीज़ें मुहैया हैं, रेडियो है, टीवी है, घर है, मकान है। सही, पहले ही कौन, मतलब जब पहले तो बड़े बड़े आदमी एक एक अंधेरी रात अफवाह में गुजार देते थे, अब तो कोई मुझे अंधेरे में चाहे एक ही बल्ब जला के रहे, तो दुनिया पहले ज़्यादा खूबसूरत हो रही है, लेकिन उससे ये ज़्यादा खुश बहुत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे ही ज़िंदगी बड़ी हो रही है, खूबसूरत हो रही, लेकिन जिम्मेदारियाँ और ख़तरे हमेशा रहते हैं और अदब है काहे के लिए, मैं तो उसी का गुलाम हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरा ये काम ही है कि सब चीज़ों को एक जैसे एक मामूली सा आदमी होता है उसको अपने लिखता रहता है, और अपने हमारा काम ही क्या है, हम प्रैक्टिकल तो बहुत कम करते हैं, तो जो आप लोग अच्छा बुरा करते हैं उसकी एक तरह से खूबसूरत क्रिएटिव पब्लिसिटी करते रहते हैं ज़िंदगी की, और वो जब कुछ अच्छा हो रहा तो मेरा ख्याल है कि साहित्य में भी और अदब में भी और शायरी में भी पहले से बेहतर होगा और हो रहा है।
1: जो कुछ बेहतर है उससे और ज़्यादा बेहतर हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
0: ज़्यादा बेहतर हो तो जैसे बिल्कुल देखिए हर आदमी के मुझसे आप कहेंगे किस तरह टीवी अच्छा बनेगा तो ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे सबके घर कलर टीवी हो जाए, लेकिन जैसे मैं साहित्य का आदमी हूँ, अदब का आदमी हूँ, तो मुझे बेहद अच्छा लग रहा है कि 30-35 साल में मैंने ये जाना कि हमारी जो बोली है उसमें जो जितनी दुनिया में जितने भी जबान के शब्द आएंगे वो हम इस शर्त पे कबूल करेंगे कि वो अपनी शनाख्त, अपनी भाषा, अपने मुल्क की शनाख्त छोड़ करके जब हिंदुस्तानी हो जाएं, मसलन ये कि ट्रेन आ रही है लेट हो गई, हमें क्लास में जाना है, हमारा पेन हमें दे दो, हमारा माइक ख़राब है और टेबल गिर गई है और रूम हमारा बहुत ही गंदा हो रहा है, किसी से हमें ना तो मतलब है ना हम जानना चाहते हैं कि इनका प्रोनंसिएशन क्या है, इनका उच्चारण क्या है, जो हमारे करोड़ों आदमियों ने तय कर दिया रूम का जो साउंड जो वजन, तो वो मतलब सब कुछ हिंदी बनता जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वही होता जैसे बड़ी ज़बानें मरी। मसलन हिंदुस्तान में पुरानी संस्कृत कैसे सो गई, पर्शियन कैसे बेकार हो गई, पर्शियन के लफ्ज से शेर आज मारना हो तो उसे पर्शियन का वो लफ्ज डाल दीजिए जो हिंदी नहीं बना, बाकी तो सभी बन गया, सुबह शाम सवेरा घर मकान, ये तो सब पर्शियन ही है जो कुछ भी है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ हिंदुस्तानी लफ्ज हैं, इसलिए कि जैसे आप पर्शियन वाले से मकान और विरासत और दुकान और खाना ये सब सुनेंगे तो उनका लहजा और उनका प्रोनंसिएशन इतना बिल्कुल डिफर करेगा। इसी तरह अंग्रेज़ी का हाल है, हमारा स्टेशन पटरी टिकट रेल रिजर्वेशन, तो इतनी बड़ी दुनिया एक जो ये जैसे हमारी हमारी भाषा यानी जिसे हिंदी भी कहते हैं और उर्दू भी कहते हैं, दोनों एक जबान है, बिल्कुल ये एक खुशी की बात है कि ये तीन भाषाओं में लिखी जाती है इस वक्त। मैं तो यहाँ कहता हूँ आप सबूत देख लीजिए, मेरी जो सबसे ज़्यादा किताब बिक रही है वाणी ने छापी है और एक तो आपने छापी उसमें भी मैंने उर्दू में लगा दिया, राजुल का साहब बिल्कुल उर्दू में भी वही लगा दिया आपके शेर
1: जी, जी।
0: अच्छा और उन्होंने तो छान के मतलब हर शेर को मेरा अंग्रेजी लिपि में लिखा, तो वो लिपि भी मैं छीन रहा हूँ वो तुम भी रह छोड़ जाओ हमारे काम आ रही है, और उर्दू में भी वही शेर और वही अंग्रेजी में और वही सबसे ज़्यादा बिक रही। तो अब तो दुनिया बहुत खूबसूरत और बहुत खुली खुली होती जा रही है। ये जो खाने में हम बंद करके जकड़ करके दरवाज़ा बंद करके थोड़ी सी हवा में 50 आदमी सांस लेके घुटन में जीते थे, वो मैंने कहा नहीं मेरी बातों में तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वही साहित्य का और अदब का होगा तो गज़ल का आदमी, तो आप गज़ल की ज़बान ही में जितने भी 150 साल में शब्द हिंदुस्तान में

थोड़ी सी हवा में 50 आदमी सांस लेके घुटन में जीते थे वो। मैंने कहा नहीं, मेरी बातों में तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वही साहित्य का और अदब का होगा, तो गज़ल का आदमी तो आप गज़ल की ज़बान ही में जितने भी 150 साल में शब्द हिंदुस्तान में

0: है क्या, ये भी एक लहजे से सोच लेने दीजिए। अगर मैं कहूँ कि दुनिया के बगैर हिंदुस्तान क्या, तो आप यकीन जानिए कि इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा साहित्य का, इतना बड़ा शायरी का, इतना बड़ा आर्ट का, इतनी दफ़ा हमारी लड़कियाँ मिस वर्ल्ड हुई हैं, तो हमारे माइनस करने के बाद दुनिया तो बहुत ही अधूरी अधूरी सी हो जाएगी, चाहे शायरी हो, चाहे हुस्न की बात हो, चाहे बदन की बात हो, चाहे क्या कहते हैं ये हमारे जो वो हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब, यहाँ कह रहे थे हम शायरी करते थे, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे कहने की कि जो तो आप कर रहे थे इससे पहले मतलब साइंटिफिक, वो भी शायरी ही थी, तो जो कर रहे हैं वही आप करते रहिए। खैर अगर आप गजल वजल कहो तो हम भी बम बनाने लगेंगे और मिटाने लगेंगे, तो दुनिया अच्छी हो रही है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ।
1: डॉक्टर साहब आपने इतनी बात की, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही आत्मीय बात रही। आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया। क्या कहा सर मैंने उनका?
1: प्रेसिडेंट बोले, फिर से बोल दीजिए जी, जो शायरी के सिलसिले में।
0: यहाँ आप अभी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाए थे तो सवेरे बिल्कुल उन्होंने चाय पी थी हमारे गवर्नर साहब के यहाँ, तो हम तो दूर बैठे हुए थे, लेकिन दोनों जब दोनों ये दोनों एक ही मेज़ पे थे, तो गवर्नर साहब ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा बुलाइए, तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही बुलाया जैसे कहा वजीर यहाँ आओ, ज़रा यहाँ आओ, तो कहा कि तो इसके माने वो बता चुके थे कि मैं ठीक शायर हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं ये, और मैं भी शायरी करता हूँ लेकिन तमिल में करता हूँ, तो मैंने कहा तो दे दीजिए फिर और मैं उसे गज़ल बना दूँगा। ये हुई थी बात हमारे जब प्रेसिडेंट साहब यहाँ तशरीफ लाए थे।
1: कुछ शेर हम
0: जी जी मैंने इधर मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने एक डेढ़ या पौने दो महीने में अमेरिका में रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि मेरी जो गज़ल की थ्योरी है वो बिल्कुल ये है कि वो शेर जो होते ही ये दावा करने लगे कि मैं बहुत दिन जीऊँगा और लाखों इंसान का हो करके उस आदमी का भी रहूँगा जिसने मुझे कहा है, उस मियार पर मैं आपको तीन शेर सुनाना चाहता हूँ। ये मैंने पौने तीन शेर जो थे वो दो महीने या डेढ़ महीने में हिंदुस्तान से बाहर अमरीका में कहे हैं, और आपको लग ही जाएगा कि वही है, लेकिन यहाँ मैंने इसको फिनिश किया है। पहला तो एक शेर ये है कि आपका शहर खूबसूरत है, ये मैंने अमरीका ही कहा था, आपका शहर खूबसूरत है, क्या यहाँ आदमी नहीं रहते। और दूसरा शेर था कि मुलाजा कीजिए कि रात पर्दे पे थी उदास गज़ल,
1: रात पर्दे पे थी
0: उदास गज़ल, मैंने टीवी के होंठ चूम लिए।
1: क्या बात,
0: रात पर्दे पे थी उदास गज़ल, मैंने टीवी पे के होंठ चूम लिए। ये दोनों तो शेर बिल्कुल ऐसे लगता है कि नई जिंदगी से पहले नहीं हो सकते थे, लेकिन एक चीज़ है जो पहले दिन की का सच है वो भी देखिए, कपड़े बदल के आता है। शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा कि पहला ख़त ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पहला ख़त ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पलकों पलकों मोती झलके, झिलमिल झिलमिल रात हुई।
1: क्या बात,
0: तो ये शेर अगर अमीर खुसरो के ज़माने में भी इसी भाषा में कहा जा सकता था, देखिए मरता कुछ नहीं, और ये मगर हाँ कि आपका शहर खूबसूरत है, क्या यहाँ आदमी नहीं रहते, बगैर अमरीका जाए नहीं हो सकता था। फिर मैं अपना शेर सुना दूँ जो अमीर खुसरो के तलवे की धूल है, कि पहला ख़त ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पहला ख़त ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पलकों पलकों मोती झलके, झिलमिल झिलमिल रात हुई।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके आने के लिए बहुत बहुत
2: शुक्रिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मशहूर शायर बद्र साहब की से ली गई एक पुरानी भेंट वार्ता। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत

0: भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है।

0: टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज की इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 7:15 और 9:30। आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा 10:00। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन। राग होगा गौरख कल्याण। आज शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे अनीता सक्सेना से ली गई भेंटवार्ता। विषय है लोक कला मांडना। ये थे आज के कुछ मुख्य कार्यक्रम और अब जानकारी देते हैं आपको कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। पहले सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कल सुबह 11 से होगा, जिसमें 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 12:30, 2:30 और 10:00। 12:30 संग्रहालय के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक सिसकियां की तीसरी कड़ी। कल दोपहर 1 महिला कार्यक्रम, 1:30 लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 2:00, शाम 5:33 पर, 6:30, 7:30 और 9:45।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 6 बजे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल रात 8 बजे। कल रात 9:30 बजे खेल जगत कार्यक्रम में सुनिएगा मोहम्मद सोहेब की वार्ता, विषय है कौन बनेगा आईपीएल 2026 का विजेता। कल रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन सुन सकेंगे, राग होगा भाव कोस। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम, और अब एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकेंगे कल सुबह 8:30। कल सुबह 9:15 सुनिएगा गांधी चर्चा। 9:30 फिल्म संगीत और 10:00 प्रसारित की जाएगी जिले की चिट्ठी। कल सुबह 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। कल सुबह 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन राग होगा चारुकेशी। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के अस्थि कलश आज भोपाल से दिल्ली भेजे गए, सांची में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के हर राज्य का कृषि रोड मैप बनेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्सव और उमंग के साथ मनाई गई और प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, आज 46 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और महामोदल्यान के पवित्र अस्थि कलश आज विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए। रायसेन जिला मुख्यालय स्थित विश्व धरोहर बौद्ध तीर्थ सांची में इन अस्थि कलश को सशस्त्र सुरक्षा बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पवित्र अवशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि
1: आज मॉर्निंग में ही जो भगवान शिष्य थे उनकी पवित्र जो अस्थियां हैं दर्शन के लिए मंगोलिया ले जाने के संबंध में आज भारत सरकार के प्रतिनिधि भी और साथ में ही जो हमारे यहाँ सोसाइटी है महाबोधि सोसाइटी उनके प्रतिनिधि सभी उपस्थित थे और उनकी सबकी उपस्थिति में आज पवित्र अस्थियों को इसको बाहर निकाला गया डबल लॉक से। और एक जो परंपरा यहाँ है, जब भी पवित्र अस्थियां बाहर निकाली जाती हैं, रिलिक्स बाहर आते हैं, तो सबसे पहले जो स्थानीय स्तर पर दर्शन के लिए श्रद्धालु रहते हैं वो दर्शन करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना के बाद एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
2: हर एक राज्य का हमें कृषि रोड मैप बनाना है। हर एक राज्य, हम पूरा सहयोग करेंगे। यहां आपके कृषि का रोड मैप बनाइए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, माटी माटी में उपस्थित तत्वों को ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सी उपयुक्त है, और उसके साथ साथ फसल बाद में रोड मैप बनेंगे। खेत बचाओ अभियान के बारे में आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है। प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर है, उनको धरती के स्वास्थ्य की भी चिंता है, भारत की जनता के लिए उनकी हर सांस चलती है, किसानों के विहित ऐसी है। लगातार खेत बचाओ अभियान पे जोर दे रहे हैं, उस पर कल प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा होगी।

0: संतुलित फर्टिलाइजर के उपयोग पर बात करना है। जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक जाएं।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह ने देश के हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश में अवैध अप्रवासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी है। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र जी के निधन पर गहन दुख जताया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बद्र ने अपनी शायरी के माध्यम से मानवता के साथ जीने का संदेश दिया। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत, भाईचारे और सौहार्द के वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। देवास जिले में ईद का पर्व हर्षोल्लास, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। धार में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन पहली बार CBSE द्वारा OSM प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया है कि
2: अभी आगे आने वाले मौसम की बात की जाए तो फिलहाल अभी 2 दिनों के अंदर जो है वो सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जो है वो डे 1 के लिए निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जैसे जिलों के अंदर दिया गया है। साथ ही दतिया और भिंड जैसे जिलों के अंदर डे 1 के अंदर ऑरेंज हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। डे 2 के अंदर भी हीट वेव जो है वो प्रदेश के जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट से हैं उसके ऊपर देखने को फिलहाल अभी मिलेगी। लेकिन साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी हमारे उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने जा रहा है कल से, तो उसके होते हुए जो है वो वर्षा की गतिविधि हमारे प्रदेश के संभागों के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। और कल जो ऑरेंज अलर्ट जो है वो शिवपुर, मुरैना जैसे जिलों के अंदर हेल स्टॉर्म का भी, थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म का 50 to 60 KMPA के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामिघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पूल ए में रखा गया है। पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें सम्मिलित हैं। भारत कल कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल की ट्विसा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान 109 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश शासन द्वारा बच्चों की रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में मध्य प्रदेश को 100% साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कटनी द्वारा नगरवासियों को निमित्त एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों, आज पूरा देश ईद उल जुहा का त्यौहार मना रहा है। यह मुस्लिम समुदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार हमें त्याग, प्रेम, दया और इंसानियत का संदेश देता है। भैयारों, इसी दिन लोग सुबह नए कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं। लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं ताकि हर कोई खुशी से त्यौहार मना सके। भैयारों, ईद उल जुहा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में प्रेम, भाईचारा और दूसरों की सहायता का भाव रखना चाहिए। यह त्यौहार समाज में एकता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। भैयारों, चर्चा अपनी चलती रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम।

0: भैयारों आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपका पुनः स्वागत है। भैयारों अपन सभी देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ही पड़ रही है, साथ ही साथ नौतपा भी चल रहे हैं। तो जा गर्मी में अपनों, अपने परिवार को और अपने जो पालतू पशु हैं बिनको ख्याल रखियो। गर्मी के समय में कोशिश करें कि 11 से 4 बजे के बीच में घर से बाहर ना जाएं। अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर जाएं तो टोपी, छाता, सूती गमछा और पानी साथ जरूर लेकर जाएं। लगातार पानी पीते रहें, जैसे कहा है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और घर वापस आकर अपनी आँखें ठंडे पानी से अच्छे से धोएं, जैसे कहा है कि हमारी आँखों को ठंडक मिलेगी। जाके अलावा अपन नींबू पानी पिएं, ORS को घोल लें, गन्ने को रस पिएं, संतरा, तरबूज, खरबूजा, आम, केरी पना इनको जरूर सेवन करें। जैसे कहा है कि अपने शरीर में जो है वो पानी की कमी है वो पूरी होती है और शरीर को ठंडक और ताजगी मिलती है। भैया अपने बच्चन को भी अपन कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद ही बाहर खेलने भेजें और साथ में पानी अवश्य दें। और अपने जो पालतू पशु हैं बिन्हें भी अपन छायादार जगह पर बांधें और बिन्हें दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से नहलाएं और उन्हें पीने के लिए ताजो और स्वच्छ पानी दें। भैयारों जाके साथ साथ अपने पर्यावरण में अपने साथ कई पशु पक्षी भी रहते हैं। पक्षियों के लाने अपन मिट्टी के सकोरे में पानी और दाने की व्यवस्था करें और अपने घर के बाहर पानी की हौद या टंकी रखें, जिससे जो पशु बाहर घूमते रहते हैं बिन के लाने पानी की व्यवस्था हो सके। अपने पर्यावरण में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं बिन के लाने ये अपनी एक सच्ची सेवा होगी। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: भैयारों आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपको पुनः स्वागत है। भैयारों आज की बचत हमें भविष्य में बहुत काम आती है, चाहे वो बचत छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। कई लोग बचत बैंक में करते हैं और जिनके पास बैंक खाता नहीं होता वे छोटी छोटी बचत घरों में रखते हैं या साहूकारों से पैसा लेकर अपनों कोई ज़रूरी काम पूरा करते हैं, लेकिन साहूकारों को शोषण कराते हैं। और बैंक में खाता न हुए के कारण सरकारी जो योजनाएं हैं इनको लाभ भी नहीं मिल पाते। और इन समस्याओं को दूर करने के लाने भारत सरकार ने एक योजना शुरू करी है जाको नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जय योजना को उद्देश्य है अपने देश के जो नागरिक हैं बिना बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। जय योजना के अंतर्गत अपने जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं बिन के लाने ये बहुत लाभकारी हुई है। जय योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी और जय योजना का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास और देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलाना। और जय योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जहाँ में बिना पैसा जमा किए अपन खाता खुलवा सकते हैं और इससे अपनी जो छोटी छोटी बचत है वो अपन बैंक में जमा कर सकते हैं और उस जमा पैसे पर हमें ब्याज भी मिलता है और हमारा जो पैसा है वो भी सुरक्षित रहता है और अपनी बचत करने की जो आदत है वो भी बनती है जो भविष्य में हमारे काम आते हैं। और जाके अलावा हमें कहीं से पैसा भी उधार नहीं लेना पड़ता और जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमें डेबिट कार्ड भी मिलता है जिससे अपन कहा है कि ATM पर जाकर पैसे निकाल सकते हैं और जनधन खाता खुलवाते समय ही हमें दुर्घटना बीमा की सुविधा भी मिल जाती है। जैसे कहा है कि कोई दुर्घटना की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलती है। तो जनधन खाते को हम इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से किसी को पैसे भेज भी सकते हैं या मंगवा भी सकते हैं। अब जैसे भैया रो अपने बच्चे हैं जो शहर में पढ़ाते हैं, और अगर अपने पास जनधन खाता होगा और वो इंटरनेट से अगर कनेक्ट है तो अपन अपने बच्चन को इंटरनेट के माध्यम से पैसा मोबाइल पर ही भेज सकते हैं। और जाके अलावा सबसे अच्छी बात जो योजना की ये है कि जहाँ में जो सरकारी योजनाएं हैं बिनको जो लाभ है वो सीधे अपने खाते में आ जाते हैं। भैया लो चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं ये प्यारा सो लोकगीत।

0: भैया रो, अभी अपन ने सुनो जी लोकगीत और अपन चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। भैया रो, जा योजना के माध्यम से अपनी जो ग्रामीण बहनें हैं वे भी अपनी छोटी छोटी बचत अपने खाते में जमा कर सकती हैं, जो कि सुरक्षित रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वे इसे निकाल कर उपयोग भी कर सकते हैं। और अपने देश की जो बड़ी आबादी जो गाँव में रहती है, पहले क्या था कि गाँव में बैंकिंग सुविधाएँ बहुत ही कम थी, लेकिन जनधन योजना के कारण गांव-गांव में बैंक मित्र और बैंक की शाखाएं खुल गई हैं, जैसे कि अपने जो किसान भैया हैं और अपने जो मजदूर हैं इन्हें बहुत लाभ हुआ है। अब अपने किसान भैया हर सरकारी सहायता, बीमा राशि और अन्य सरकारी योजनाओं को लाभ सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं और इससे उनका समय और पैसे दोनों की बचत होते हैं। भैया जय योजना ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, करोड़ों लोगों ने नए खाते खोले हैं, इनमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो महिलाओं और अपने जो ग्रामीण भैया बहन हैं बिन की है। और यदि अपन अपने जो भैया बहन हैं तो जय योजना को उपयोग करेंगे तो देश को हर नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वास्तव में गरीबों का विकास और देश की प्रगति का मजबूत आधार है। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब सुनते हैं भेंट वार्ता जाको विषय है मिट्टी परीक्षण क्यों और कैसे, जाके बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर सुधीर कुमार त्रिवेदी और भेंट करता है सोहन सिंह। तो सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छे बीज रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। रासायनिक खादों का उपयोग करने के उपरांत भी कभी कभी वांछित उत्पादन नहीं मिल पाता है और वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि मिट्टी की जांच कराई जाए। मिट्टी की जांच से क्या तात्पर्य है, मिट्टी की जांच कैसे करानी चाहिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर सुधीर कुमार त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार साहब।
1: डॉक्टर साहब, मिट्टी परीक्षण से क्या तात्पर्य है?
2: जो हमारे किसान भाइयों के खेत हैं वहाँ से हम मिट्टी को प्रयोगशाला में लाकर उसकी जो जांच करते हैं उसको मिट्टी परीक्षण कहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये मिट्टी परीक्षण है, इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों महसूस हो रही है?
2: पौधों को भी अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ये तत्व जो है भूमि में उपस्थित रहते हैं और पौधे इन तत्वों को ग्रहण करके अपनी लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। तो मिट्टी परीक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये तत्व जो मिट्टी में है ये धीरे धीरे की कमी होती जा रही है। उसका कारण यह है कि हमारे किसान भाई पहले एक फसल लिया करते थे जब पानी की सुविधा नहीं थी, उनके पास ट्यूबवेल नहीं थे या नहर नहीं थी। अब तो किसान भाई हमारे तीन तीन फसल लेने लगे हैं क्योंकि उनके पास पानी की सुविधा हो गई है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि तत्व जो थे अब उनको तीन फसल ग्रहण कर रही हैं, निश्चित तौर पे धीरे धीरे उनकी कमी होती जाएगी। भूमि में जो है पौधों के लिए मुख्य 16 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिसमें नत्रजन, स्फुर और पोटाश, इसलिए इनको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। इसके अलावा गंधक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये द्वितीय पोषक तत्व कहलाते हैं जो मुख्य पोषक तत्व से इनकी कम आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा और भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं पौधे को अपने बढ़वार के लिए आवश्यक होती है, इसलिए जो है मिट्टी परीक्षण का बहुत बड़ा इसमें महत्व है।
1: डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेना चाहें
2: जी,
1: तो नमूना हमारे किसान भाई किस तरह लें?
2: नमूना लेने की जो विधि है अगर उसको किसान भाई नहीं अपनाएंगे तो उनका मिट्टी परीक्षण से कोई उनको जो है फायदा नहीं होगा, क्योंकि नमूना ही एक ऐसा है जिसको किसान भाई को बड़ी सतर्कता से लेना है। इसके लिए किसान भाई को अगर उसके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है तो उसमें से उसको चारों जो खेत के किनारे हैं और एक बीच में, ऐसे कुल 5 जगह हो गई, वहाँ वो निशान लगा ले, वहाँ से जो है ऊपर की थोड़ी सफाई कर ले। अगर वहाँ पर कोई ऑर्गेनिक मैनर या अपन कह सकते हैं गोबर की खाद या कुछ डली हुई है तो उसको भी वहाँ से साफ कर दें और वहाँ से वो जो है 9 इंच के करीब का गड्ढा करें 5 जगह से और उसमें से मिट्टी बाहर निकालें और उस मिट्टी को आपस में मिला लें एक तसले में लेके, उसके बाद उसका जो चौथाई भाग है वो रखें और बाकी की मिट्टी फेंक दें। इसके बाद पुनः वो चौथाई भाग कोई ही फिर चौथाई भाग करें, जब उसके पास आधा किलो मिट्टी बचे तब वो एक कपड़े की थैली में जो है उसको रख ले और अपना खसरा नंबर या अपना नाम जो भी रख करें। अब बात आती है कि 9 इंच का ही क्यों गड्ढा कहा गया? 9 इंच का इसलिए गड्ढा करने के लिए कहते हैं, वो वी आकार का, जैसे इंग्लिश में जो वी होता है उस आकार का गड्ढा किया जाता है। ज़्यादातर जो फसल होती हैं उनकी जो जड़ें हैं वो 9 इंच तक जाती हैं, पौधा जो है, वो फसल जो है, वो वहीं से जो है अपने इन पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। जरूरी है कि 9 इंच तक का जो है गड्ढा करके वहां से मृदा का नमूना लिया जाए, जिससे कि सही जानकारी तत्वों की मिल सके कि उस गहराई पे कितने पोषक तत्वों की क्या मात्रा उपस्थित है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अगर मिट्टी परीक्षण करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब, जो नमूना लेने का जो उपयुक्त समय है वो कौन सा रहता है?
2: वैसे तो नमूना कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन जो नमूना लेने का सही समय है वो इस समय चल रहा है, गर्मी के समय, क्योंकि गर्मी के समय किसान भाई के पास कोई भी फसल नहीं होती। ज़्यादातर किसान भाई जो है गर्मी की फसल जो लेते हैं उनको छोड़ के बाकी जो खरीफ और रवि की फसल लेते हैं उनके आजकल खेत खाली पड़े हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दें, जिससे कि नमी है खेत में वो खेत में रहेगी। लेकिन ये जो समय बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि इस समय फसल नहीं रहती और किसान भाई आराम से अपना नमूना ले सकते हैं। किसान भाई को जब अगर नमूना खड़ी फसल में लेना है, मजबूरी है या अपनी फसल खड़ी हुई है और अपन को वहाँ से नमूना लेना है, तो 2 कूड जो होते हैं उनके बीच में ऊपर की सफाई करके किसान भाई वहाँ से भी नमूना ले सकता है। लेकिन इस समय जो है बड़ा ये उचित समय है, इस समय किसान भाई अपने खेतों के मिट्टी का नमूना लें, पास की जो भी प्रयोगशाला है वहाँ पर पहुँचाएं।
1: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को जो मिट्टी परीक्षण है वो कितने वर्ष के अंतराल पर करवाते रहना?
2: देखिए, हमारे किसान भाइयों को हर दूसरे साल परीक्षण कराना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने अगर 2 साल के अंतराल से करा रहे हैं, तो एक आध साल अगर देर से भी हो जाए तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आजकल तीनों मौसम में खेती ले रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि 2 साल के बाद अपना खेत के नमूने की जांच कराते रहें, जिससे कि पता चलता रहेगा कि हमारे खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की क्या मात्रा है और कितनी मात्रा होनी चाहिए और पौधे को कितनी आवश्यकता होती है। क्योंकि कई फसल ऐसी रहती है नत्रजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे जितनी भी खाद्यान्न की फसलें हैं ये नत्रजन ज्यादा ग्रहण करती हैं, दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलों को फास्फोरस की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए किसान भाई कौन सी फसल ले रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है पोषक तत्व किस मात्रा में, कितनी मात्रा में पौधों के द्वारा लिया जा रहा है। सलाह देना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों को कि अगर खरीफ में अगर वो खाद्यान्न की फसल लेते हैं तो रवि में वो दलहनी फसल लें, अगर खरीफ में दलहनी फसल ले रहे हैं तो रवि में खाद्यान्न की फसल लें। खाद्यान्न की जो फसल को बहुत आवश्यकता पड़ती है, खासकर नत्रजन की आवश्यकता पड़ती है, कि दलहनी फसल लगाने से दलहनी फसलों में यह कैरेक्टर रहता है, उनका जो एक गुण रहता है कि वो भूमि में वायुमंडल की जो नत्रजन को भूमि में एकत्रित करती हैं, तो ये भूमि में एकत्रित हुई जो है नत्रजन ये खाद्यान्न फसलों को आगे फायदा देता है।
1: डॉक्टर, हमारे किसान भाई अगर मिट्टी परीक्षण करवाते हैं
2: जी,
1: तो सामान्यतः उन्हें कौन कौन सी ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं जो उनका फसल उत्पादन है उसको बढ़ाने में सहायक होती हैं?
2: पोषक तत्व जो है मिट्टी परीक्षण से ही पता चलता है कि हमारे किसान भाई की जो है खेत में क्या पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में है कि कमी है। इसके अलावा जो है एक सबसे बड़ा एक आता है पीएच से पता चलता है कि हमारी मृदा अम्लीय हो रही है या क्षारीय हो रही है, लवणीय हो रही है। क्योंकि आजकल क्या हो गया, किसान भाई हमारे जैसे ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं या अपना नहर से पानी ले रहे हैं, तो वो अपना पानी का जो है परीक्षण नहीं करवाते। पानी के परीक्षण में कौन से लवण ज़्यादा मात्रा में है, सिंचाई के लायक है कि नहीं है, पूरा खेत भर देंगे, लबालब पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके कारण क्या होता जा रहा है कि उन पानी में जो उपस्थित लवण जो है खेत की मिट्टी को खराब कर रहे हैं। तो पीएच के द्वारा हमें ये पता चलता है कि मिट्टी है वो लवणीय हो रही है, लवणीय के बाद आता है क्षारीय होना, जिसमें हमारी कहते हैं सोडियम की मात्रा ज़्यादा, नौना जिसे कहते हैं, राग जैसा हो जाते हैं, वो सोडियम के कारण होता है। इसीलिए हम पीएच निकालते हैं और इसके बाद हम निकालते हैं विद्युत चालकता। निकालने से ये पता चलता है कि हमारे लवण कितनी मात्रा में मिट्टी में उपस्थित हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उनको दूर करते हैं, रासायनिक विधि से भी किया जाता है, भौतिक विधि से भी किया जाता है। इसके अलावा तीसरा आता है सरंध, जो हमारा कार्बन है जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये मिट्टी की भौतिक दशा है सुधारता है। इसलिए हमारे किसानों रासायनिक खाद के अलावा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट उपयोग ही नहीं कर रहा है, डाल ही नहीं रहा है, क्योंकि कईयों किसानों के पास जानवर नहीं है, सिर्फ रासायनिक खाद डाल देते हैं। कार्बनिक खाद ना डालने से उनकी भूमि की भौतिक दशा खराब होती जा रही है, कार्बन की कमी होती जा रही है। कार्बन जो है वायुमंडल में बढ़ रहा है लेकिन जमीन में कम हो रहा है, जबकि आजकल जमीन में ज़्यादा होना चाहिए, वायुमंडल में कम होना चाहिए। तो इसीलिए मिट्टी परीक्षण से ये पता चल जाता है कि हमारे मिट्टी में कार्बन कितनी मात्रा है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे उसकी भौतिक दशा है, गठन कैसा है मिट्टी का, तो हमें मालूम पड़ जाता है। जैसे अगर मिट्टी हमारी मार मिट्टी है, जैसे कहते हैं दोमट मिट्टी है, अगर तो पानी का रिसाव कम होगा नहीं है। इसके अलावा अगर हमारी रेतीली मिट्टी है तो उससे पता चल जाता है कि भाई पानी इसमें कितनी देर ठहरता है, कब कब पानी देना है, कौन सी फसल लेना है।
1: डॉक्टर साहब, क्या मिट्टी परीक्षण करवाने से हमारे किसान भाइयों को सूक्ष्म तत्वों की भी जानकारी मिल जाती है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसको सूक्ष्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी मात्रा पौधे को बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यक रहते हैं लेकिन क्वांटिटी जो मात्रा कहेंगे वो कम मात्रा में लगती है, इसलिए उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे जिंक है, आयरन है, बोरोन है, मॉलिब्डेनम है, ये 8 पोषक तत्व कैसे हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन ये है आवश्यक। कम इनकी कमी रहेगी किसान जो चाहता है अपनी फसल उपज वो उनको नहीं मिलेगी, इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व का भी जो है परीक्षण कराना आवश्यक है। मुख्य पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व का भी मिट्टी में किसान भाई हमारे जांच कराएंगे तो निश्चित तौर पे आजकल उनको किसी न किसी या तो जिंक की कमी मिलेगी या आयरन की कमी मिलेगी, निश्चित तौर पे कमी मिलेगी क्योंकि हमारे किसान भाई रासायनिक खाद डाल ही नहीं रहे जिसमें कि ये तत्व उपस्थित है, वो तो सिर्फ यूरिया, सुपरफॉस्फेट या DAP, तीन के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, जबकि ये बहुत आवश्यक हो गया है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का परीक्षण कराने के बाद अब सूक्ष्म पोषक तत्व जिन रासायनिक खादों में वो किसान भाई हमारा उपयोग करें। सूक्ष्म पोषक तत्व को किसान भाई कभी भी कुदाली या लोहे के या किसी औजार से ना लें, लकड़ी औजार से वो निकालें कि नहीं तो उनकी में लोहे की मात्रा या कुछ मात्रा आ जाएगी जिससे उनका परीक्षण नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखें और पॉलिथीन की थैली में रखें। कृषि विज्ञान केंद्र खुल गए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र में सब जगह प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है। हमारे किसान भाई ग्वालियर की बात करें तो हमारे ग्वालियर में कृषि महाविद्यालय के पास में ही कृषि विज्ञान केंद्र भी है, किसान भाई आए हैं वहाँ पर अपना सैंपल लेके आ जाएं, अपना नमूना लेके आए, या तो कृषि विज्ञान केंद्र में करा लें नहीं तो कृषि महाविद्यालय में भी ये सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर नॉमिनल चार्ज लगता है, कम पैसे में पूरी जानकारी आपको मिल जाती है कि कृषि महाविद्यालय चले जाएं या फिर कृषि विज्ञान केंद्र, दो में से आप एक जगह जाके अपना परीक्षण करा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब अंत में चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे हमारे किसान भाई मिट्टी परीक्षण करवाएं और फसलों से भरपूर उत्पादन पाएं?
2: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मिट्टी परीक्षण पे हमारे किसान भाई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम भी जो गांव में जाते हैं तो मिट्टी परीक्षण के बारे में पूछते हैं तो हमारे किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण क्या है उसके बारे में ही जानकारी नहीं है, कराने की तो आप बात छोड़िए। मेरा तो किसान भाइयों से यही निवेदन है जिन्होंने मिट्टी परीक्षण नहीं कराया वो तुरंत कराएं, यही गर्मियों में अपना मिट्टी का नमूना लें और अपना प्रयोगशाला में जाके दें, और जिन्होंने अगर कभी 5 साल पहले या 4 साल पहले कराया वो दोबारा कराएं। जब तक आप मिट्टी परीक्षण करके अगर आप खेती नहीं करेंगे तो आपको वांछित उपज मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि हमें कौन सा तत्व कितनी मात्रा में देना है। कई किसान भाई जबरदस्ती यूरिया देते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, आप पहले पता तो लगाइए कि उसमें नत्रजन कितना देना है, स्फुर की कमी है तो स्फुर कितना देना है। तो इसीलिए सबसे पहले किसान भाई अपना बोनी से पहले अपना मिट्टी परीक्षण करा लें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे उनको जो है उनकी फसल का उत्पादन उनको ज्यादा मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण कैसे कराएं और मिट्टी परीक्षण के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भैयारों अभी अपन सुन रहे थे भेंट वार्ता, जाकर विषय है तो मिट्टी परीक्षण क्यों और कैसे, जाके बारे में आपको बता रहे थे डॉक्टर सुधीर कुमार त्रिवेदी और भेंट करता थे सोहन सिंह। तो भैयारों इस भेंट वार्ता के माध्यम से अपन ने जानो कि अपन को मिट्टी परीक्षण के लाने मिट्टी किस तरीके से लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है और बाय अपन कैसे अपन प्रयोगशाला भेजें, और प्रयोगशाला भेजने के बाद अपन को ये जानकारी जरूर मिल जाता है कि अपनी मिट्टी में काका चीज़ की कमी है, काका चीज़ अधिक है, तो अपन अपनी खेती किसानी में उचित तौर पे खादों का उपयोग कर अपनी खेती किसानी से अच्छो लाभ कमा सकते हैं। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम और सुनते हैं ये संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भैयाओं, अपन सभी जानते हैं कि अपना जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, और जहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग गांव के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, और अपने गांव की जो अर्थव्यवस्था है बाकी मुख्य आधार जो है वो कृषि है। लेकिन केवल खेती किसानी के भरोसे अब जीवन यापन नहीं कर सकते। अब बढ़ती जनसंख्या, सीमित कृषि भूमि और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अपने जो ग्रामीण युवा हैं बिन में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में लघु उद्योग ग्रामीण विकास और स्वरोजगार का सबसे अच्छा साधन है। यदि अपन गांव में छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर लें तो न केवल रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं, बासे कहा है कि अपने गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो भी अपनी मजबूत होगी। भैया, लघु उद्योग को अर्थ होते हुए जहाँ में कम पूंजी, सीमित संसाधनों और कम संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और जो उद्योग अपन छोटे छोटे स्तर पर बना सकते हैं और स्थानीय संसाधनों को अपन उपयोग कर सकते हैं। भैया, जब लघु उद्योग में अपन सबसे पहले जो उद्योग है वो अपन अगरबत्ती और धूपबत्ती को उद्योग कर सकते हैं चालू, तो ये जो उद्योग है वो कम पूंजी में शुरू कर हो जा सकता है, और अपने ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं और जो युवा है वो आसानी से जो काम को कर सकते हैं। और अपन जानते हैं कि सुगंधित पदार्थों की मांग हमेशा बनी रहती है, और अगर अपन अच्छी क्वालिटी को माल बनाएंगे तो बाकी दाम भी अपन को अच्छे मिलेंगे। जाके साथ साथ अपन देखते हैं न कि अपने गाँव में अपन सबके पास पशु तो रहते ही है, तो अपन पशुपालन के साथ साथ दूध, दही, घी, पनीर इनको अपन व्यवसाय कर सकते हैं, और जासे भी अपन को अच्छो लाभ मिल सकते हैं। जाके अलावा अपन अपनी खेती किसानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन को भी काम कर सकते हैं, तो मधुमक्खी पालन से क्या है कि अपन को शहद और मोम तो प्राप्त होगा, साथ ही साथ ये कम लागत और अधिक लाभ वालों व्यवसाय है। और भैयारों, मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी खास बात ये है कि अपन अगर सरसों की खेती किसानी करते हैं और बाकी साथ अगर अपन मधुमक्खी पालन को व्यवसाय कराते हैं तो जो अपनी सरसों की पैदावार है तो वो भी बहुत बढ़ जाते हैं, और आप अपन देखते हैं कि असली शहद की मांग भी बहुत है और बाकी दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जी अपन अपनी खेती किसानी के साथ साथ कर सकते हैं। जाके अलावा अपन देखते हैं ना कि मशरूम की मांग भी बढ़ जा रही है, और मशरूम जो है अपन कम जगह में कम लागत में जाको अपन उत्पादन कर सकते हैं। जाके अलावा अपन देखते हैं कि अपने जो ग्रामीण भैया बहन हैं वे कई प्रकार की पारंपरिक कला में निपुण होते हैं। कई भैया बहन मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाते हैं, बांस की वस्तुएँ अच्छी बनाते हैं, लकड़ी को काम अच्छे कर लेते हैं, और हस्त निर्मित जो वस्तुएँ हैं जैसे साड़ी है और साड़ियों पे जो अपन पेंटिंग कराते हैं बिनकी भी मांग देश विदेश में बहुत की जाती है, और अगर जब काम को अपन अपने गाँव में शुरू करें तो निश्चित तौर पर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जाके साथ साथ अचार, पापड़, मसाले, नमकीन, जैम, जेली इनको भी अपन निर्माण कर सकते हैं, जे भी कम लागत में अपन को अच्छा लाभ देख सकते हैं। और आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय चल रहा है जैविक खाद को निर्माण। भैया, जैविक खेती को महत्व बढ़त जा रहा है, तो अपन गोबर और कृषि अवशिष्ट से बर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद बनाकर अपन अच्छा लाभ कमा सकते हैं। भैया, जाके अलावा जा योजना में सबसे अच्छी बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने में सरकार भी बहुत सहायता कर रही है।

गांव में अपने जो को कच्चो माल भी आसानी से मिल जाता है, बाको भी अपन उपयोग कर सकते हैं। जाके अलावा अपनी जो बहनें हैं बे भी इसमें सहायता कर सकती हैं, और घर बैठे सिलाई, अचार, पापड़ और अगरबत्ती निर्माण, धूप बत्ती निर्माण, हस्तशिल्प जैसे कार्य करके वे भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इससे कहा है कि अपने जो रोजगार की तलाश में युवा शहर की तरफ जाते हैं, वे नहीं जाएंगे, और गांव में अगर रोजगार उपलब्ध हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो अन्य युवा साथियों को भी रोजगार देंगे। भैया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से कई प्रकार के प्रशिक्षण और ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। भैयारों जाके अतिरिक्त नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी साथियों, भैया बहनों, युवा वर्ग से यही कहेंगे कि अपने क्षेत्र में लघु उद्योग लगाएं और स्वरोजगार अपनाएं, और साथ ही साथ और लोगों को भी रोजगार प्रदान करें। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं जे लोकगीत।

0: और गौतम नार्य अहिल्या स्वामी
1: भैयारों। अब हो गई है चलवे की बेला, तो सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: Surgiome.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन।
2: सर्वोच्च न्यायालय के कल के अहम फैसले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को पूरी तरह वैध ठहराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास SIR करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद विपक्षी पार्टियों के SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर पूरी तरह विराम लग गया। विपक्ष के इन सवालों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत जी, स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आइए हम सुनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।
2: आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, ये जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, जो स्वच्छता की बात करते हैं इलेक्टोरल रोल की, इसमें SIR का कितना महत्व रहता है?
3: बहुत ही महत्व रहता है क्योंकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है शुरू होता है इलेक्टोरल रोल से। कोई भी देश का, खाली भारत का नहीं, कोई भी देश का इलेक्टोरल रोल जो है वो अगर सही हो तो फिर इलेक्शन साफ होता है, फ्री फेयर होता है और इलेक्शन के नतीजे लोगों का विल को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए सारी चीज का शुरुआत है वोटर लिस्ट से, जिसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। और भारत के इलेक्टोरल रोल जैसे है कि करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंचने वाला था, दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल है, शायद बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं होगा, लेकिन वो 100 करोड़ में अभी एक पॉज लग गया है SIR के जरिए। अभी थोड़ा सा रिवर्स होगा, कुछ नंबर्स घटेंगे और घटेंगे क्यों, अच्छे कारण से घटेंगे। अच्छे कारण से इसलिए घटेंगे क्योंकि सब घोस्ट नेम्स थे, ये नेम का कोई महात्म्य नहीं था। जो इलेक्टोरल रोल में जो मरे हुए लोगों का नाम हो या जो चले गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के उन लोगों का नाम हो या जो लोगों का नाम दो तीन जगह में हो उनका नाम हो तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस सब को साफ करने के लिए और जो लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहना चाहिए उनको नाम को निकालने के लिए और खास करके आर्टिकल 326 के अनुसार कौन कौन एलिजिबिलिटी है हमारा भारत की इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए, नागरिक होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब तो देखना होगा ना। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन में ये सब चीज को अच्छी तरह देखा गया क्योंकि उसमें एन्यूमरेशन होता है फ्रेश। एक बार मान लीजिए कि एक बार एक फ्रेश लिस्ट जैसे बनता है वो बात है, क्योंकि हर साल जो होता है समरी रिविजन उसमें क्या है, उसी लिस्ट के ऊपर करेक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसमें लेकिन मान लीजिए कि पूरा एक बार एक समूचा नया इलेक्टोरल रोल आपके सामने रखा गया है

0: 20-22 साल के बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से वो काम दुरुस्त तरीके से होता है, तो इसलिए होना चाहिए।
1: जो प्रक्रिया हुई, जो बिहार से शुरू हुई और बाद में फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया सेकेंड फेज में, और थर्ड फेज का काम अभी चल रहा है, इस बीच में एक विवाद खड़ा हो गया SIR को लेकर, तो इन सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो पूरा विवाद रहा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आने के पहले?
0: देखिए, जितने अथॉरिटीज होते हैं देश में, या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्निंग एजेंसीज होते हैं, ये सबसे इलेक्शन कमीशन थोड़ा अलग तरह के है। इनका काम ही एक हिसाब से पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कैंडिडेट के साथ, रोज काम इन्हीं के साथ ही होता है। इनका पंजीकरण करना, इनका कैंपेन को रेगुलेट करना, इनका इलेक्शन कंडक्ट करना, इनका नतीजे निकालना, ये सब इलेक्शन कमीशन काम है। सिंबल्स देना, ये सब काम है। तो ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता है एक हिसाब से। तो उसका मतलब नहीं है कि जरूर विवाद हो, उसका मतलब नहीं है कि जरूर पॉलिटिकल एक्यूजेशंस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल जरूर होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR इस तरीके से क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है लोगों को तकलीफ देता है, इस तरह से नहीं करके ऐसे करना चाहिए, समय इतना लगना चाहिए, जो प्रोसीज्योर एलिमेंट है उस पर बार बार सुझाव आना चाहिए और बार बार प्रश्न भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है वो सुझाव को लेके कुछ परिवर्तन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन, करेक्शन, कोर्स करेक्शन करना है, किया भी है इलेक्शन कमीशन, कुछ अपने आप में किया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया है। 60 करोड़ लोगों का SIR हो चुका है, करीब 40 करोड़ लोगों का होना बाकी है, बड़े बड़े स्टेट्स में जनरली हो चुका है। तो इसमें जो सवाल आए लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों का जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, जैसे अर्बन नहीं है, जो लिखा पढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता नहीं है और वो जाके पेपर के पीछे भाग रहे हैं या कहां अपील करने के लिए भाग रहे हैं, तो वो डिफिकल्टीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और कुछ हद तक एड्रेस भी हुआ है। लेकिन उसका राजनीतिकरण एक अलग बात है। वो राजनीतिकरण जब हो जाता है उसका मतलब यह है कि आपका पॉलिटिकल आउटकम को नजर में रखते हुए आप किसको काठगढ़ में खड़ा कर सकते हो, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन को आरोप लगा सकते हो और कुछ कर सकते हो, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया बात है ही नहीं। आप देखिए, एक तरफ बात चल रहा है कि भाई इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को निकालना है, एक तरफ बात चल रहा है कि लोगों का अधिकार से वंचित नहीं करा जाना चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट लोगों का हो रहा है। मुझे लग रहा है ये सब है राजनीतिक अल्फाज, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अल्फाज है वो है दो चीज। एक है कि भाई जो डेड हैं, जो डुप्लीकेट हैं, जो माइग्रेटेड हैं, इनका नाम को जरूर निकालना है, HD वोटर्स, और बाकी जो 326 में जो वोटर लिस्ट में जिनका होना चाहिए लोगों का एलिजिबिलिटी उनके हिसाब से, उनको अगर नहीं है तो उनको निकालना चाहिए, बाकी लोग जो एलिजिबल है उनको जोड़ना चाहिए। नो वन एलिजिबल शुड बी लेफ्ट आउट, नो वन इनएलिजिबल शुड बी इन। इस तरह का बात अगर हो तो तरीके की बात चलता है, फिर ये लोकतांत्रिक होता है, संविधानिक बात होता है, राजनीति को एक बार छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति, जैसे आप और हम जानते हैं और देखे भी हैं इस सिलसिले में, राजनीति बहुत हद तक इसके अंदर आ गया और राजनीतिक सवाले आए और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, तो आरोप तो किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वो सब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, टू थ्रो द बेबी टुगेदर विद बाथ वाटर, अब बाथ वाटर को आप निपटाइए लेकिन उसका मतलब बच्चा को भी फेंक देंगे क्या? तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये अवॉइडेबल था, लेकिन आज की तारीख में, खास करके आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मोहर लगाया है उसके बाद विवाद अंत होना चाहिए और पीसफुल स्मूथ तरीके से सबका कोऑपरेशन के साथ बाकी SIR के जितना प्रक्रिया है, ये वाली और आने वाली कभी भी SIR होगा, वो ठीक से हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेवारी बनता है, जो जो सवाल करें सुझाव दें, सुने, जो सवाल करें उसके जवाब दें।
1: सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल जजमेंट को कैसे व्यू करते हैं?
0: एक तो है कि आप आर्टिकल 3326 में जो वोटर इंडिया में इलेक्टर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसमें एक है कि वो सिटीजन होना चाहिए, तो भारत की सिटीजन को ही खाली वोटर लिस्ट में डाल सकता है कौन? डालेगा इलेक्शन कमीशन, डालेगा तो इलेक्शन कमीशन रख सकता है, हाँ भाई ये सिटीजन है इसलिए वोटर लिस्ट में है, ये सिटीजन नहीं है इसलिए वोटर लिस्ट में नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोला है बहुत सही बोला है, क्योंकि SIR सिटीजनशिप या घुसपैठिया या इन्फिल्ट्रेटर बाहर के नागरिक, ये चीजों का सोल्यूशन नहीं है। SIR सोल्यूशन नहीं है ना। नागरिकता किसका है नहीं है उसका पुलिसिंग करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सिटीजनशिप एक्ट अलग है, उसका अथॉरिटीज अलग है,

0: और वो जो अथॉरिटीज हैं वो देखें कैसे लोग बाहर देश के लोग हमारे यहाँ आके नहीं रहे, यहाँ के नागरिक नहीं बने, या नागरिक को जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिले, ये सब देखने का अलग है, सिटीजनशिप एक्ट है इनका है। एक है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसी के तहत लेकिन जो इलेक्टोरल रोल में रखेंगे वो नागरिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायलेमा को या ये जो चीज को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, और पहले भी ऑब्जर्वेशन दिया था इलेक्शन कमीशन, ये तो मेरे को लगता है कि जो जजमेंट था बहुत हद तक एंटिसिपेटेड था। ये इतना सारे महीनों से चल रहा है ये सारे हियरिंग्स, कि इसमें बहुत कीमती ऑब्जर्वेशंस दिया है बीच में सुप्रीम कोर्ट, वो फाइनली जजमेंट में कन्वर्ट हुआ कल। लेकिन उसने बोला है कि जो फाइनल सिटीजन कोई है या नहीं है उसको डिसाइड करेगा सिटीजनशिप एक्ट, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि किसका सिटीजनशिप का वैलिडिटी नहीं है वोटर लिस्ट में होने के लिए, तो वो वोटर लिस्ट से उसको निकाल सकता है। वो एक लिमिटेड पर्पस, अगर माने लिमिटेड पर्पस है, लेकिन उसका सिटीजनशिप का जो समूचा पर्सनालिटी है एक सिटीजन का वो डिसाइड करेगा, उसके लिए एक्ट है, अथॉरिटीज अलग है। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग करके दिखाया है, और ये भी सही है, पहले भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है और ये भी सही है।
1: सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद इशू सेटल्ड माना जाए?
0: मैं तो सोच रहा हूं बिल्कुल सेटल्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सेंसिटिवनेस था वो बॉर्डर स्टेट ऑफ जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में ये सब स्थिति ज्यादा था, एक तो पॉलिटिकल साइड से, एक बार रियल टोपोग्राफिकल या ज्योग्राफिकल सेंस में या हिस्टोरिकल सेंस में या सोशियोलॉजिकल सेंस में, वहां इस इशू का ज्यादा एक रिलेवेंस था, वैलिडिटी था, और पॉलिटिसाइज तो था ही, तो इसीलिए वहां से अगर निकल गया है। और अभी मैंने जैसे कहा ना 60% आबादी जो है, वोटर्स आबादी जो है 100 करोड़ मान लो रफली थे 2024 में, शायद वही था, करीब 100 करोड़ वोटर होने वाले थे, और उसमें से अगर 60 करोड़ का हो गया, 40 करोड़ का तो हो जाने का तो कोई नहीं होने का मुझे नहीं लग रहा है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल मोहर लगा दिया तब तो ये सब कुछ क्लियर क्लियर क्लियर हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको और आपके श्रोताओं को, कि इलेक्शन कमीशन पिछले 10-15 साल से एक बड़ा मुहिम में जुड़ा हुआ था। उसका है कि जो जो लोग हैं एलिजिबल सब पंजीकृत हो, और जो पंजीकृत हैं सब वोट दें, तो लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में बहुत बड़ा मुहिम चला है, और उसका नाम एक आप स्वीप जानते हैं, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छे नतीजे आया था। जो टर्नआउट में जो लास्ट 10-15 साल में इजाफा हुआ है रजिस्ट्रेशन में भी, वो इसी का कारण से ये एक इलेक्शन कमीशन का मुहिम था। मुझे लग रहा है कि ये SIR ने जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको निकालने का जो एक कैरेक्टर बन के उभरा है, यही उसका कैरेक्टर है बेसिकली, क्योंकि जो नहीं है उनको निकालो, लेकिन जो एलिजिबल हैं देश में उनको जोड़ो, वो भी इसका एक पर्पस है। लेकिन जो देखा लोगों ने इस चीज ज्यादा उभर कर आया कि भाई नाम लोगों का निकल जा रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार और वो माहौल बनना चाहिए, कैंपेन बनना चाहिए, कि जो जो लोग देश में जहां जहां हैं जो एलिजिबल हैं आर्टिकल 326 के अंदर, तो उनको सबको जोड़ा जाए, फिर जोड़ने का एक मुहिम अच्छी तरह हो पंजीकरण और वोटिंग में, तो फिर डेमोक्रेसी में थोड़ा भागीदारी का और एक परिवेश या माहौल बनेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन SIR के ऊपर मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है अंत है, और उसके हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिटीजन्स को, वोटर्स को, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबको आगे बढ़ना चाहिए अभी।
1: धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत मिली फिल्म से, आवाज किशोर।

रजनीकांता। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, योगेश का गीत और सलील चौधरी का संगीत।

खट्टा मीठा। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, गुलजार का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं खानदान फिल्म का ये नगमा, नक्श लियालपुरी का लिखा हुआ और संगीतबद्ध खय्याम का।

मुकद्दर का सिकंदर। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा आशा भोंसले की आवाज़ में। अनजान के लिखे गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:42 हुए हैं, वक्त है अंतराल का।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया

0: ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डी के शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गयी। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहाँ वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज

दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुनबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद आज दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नजदीक कब्रिस्तान में आज शाम की गई। बशीर बद्र एक तवील अरसे से निसियान की बीमारी में मुबतला थे। वो उर्दू शायरी को जदीद तर्ज में ढालने और आसान लहो लहजे में शेर कहने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलें भारत और बैरून मुल्क काफी ज्यादा मकबूल हुई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। ये लाफानी अशार बशीर बद्र की शायरी की जान है। नहायत सलीस अल्फाज मगर तासुरात बहुत गहरे, गुरबत पर मबनी जज्बात लेकिन ख्यालात आफाकी। उनकी शायरी में मोहब्बत, फुरकत, रिश्ते, अलहदगी और रोजमर्रा की जिंदगी के खामोश पोशीदा जज्बात पाए जाते हैं। बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को एक ऐसी जबान अता करके एक नई जहद बख्शी जो आम लोगों के दिल के बहुत करीब है। उनके अशार मुशायरों में तो गूंजते ही थे, साथ ही अक्सर व बेशतर गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बहुत से मुशायरों की निजामत भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में की। बशीर बद्र को 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था और उनके मजमूए कलाम आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड अता किया गया था। न्यूज डेस्क से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के साइंसदान डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों को शदीद गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी।
2: तो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया।
0: कौमी राजधानी खत्ते के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। दो भारतीय पहलवान आज वियतनाम के शहर दनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रोम जुमरे में सचिन कलप्पा श्रोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11-4 से शिकस्त दी, जबकि रुद्र किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भारत की पीवी संधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आरजू फिल्म से। अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

तुम बिन टू डीजे फिल्म से अंकित तिवारी को शकील आजमी का गीत और मनोज मुंतशिर का संगीत।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में सुनिए नगीना फिल्म का ये नगमा। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश और मयंक। रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा ने। तो सुनिए आप सबकी पसंद पर जांबाज फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार और सपना की आवाज़ों में।

लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सबने सुनना चाहा है बाजीगर फिल्म का ये नगमा, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। जमीर काजमी के लिखे गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने। तो सुनते हैं इन सब की फरमाइश का ये नगमा।

अम्बेडकर चौक खुरैसी राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लू राम पूरन रोहित छोटू डुंडुन एवं समस्त परिवार नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा मीना राणा मोनिका नुपुर ऋषिका और रॉबिन आप सबने सुनना चाहा है। चालबाज फिल्म का ये नगमा मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम आयशा खान हादिया खान असमा सालिया शुएब खान मुस्तफ़ा खान रऊफ भाई शाहिद भाई गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली कटनकर पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक मोहम्मद शाकिर मुश्ताक अहमद बेबी मंसार रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी आप सब ने सुनना चाहा है जंगबाज फिल्म का ये नगमा मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में गीत और संगीत रविंद्र जैन का

इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिए पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन, राग है गौरा कल्याण। आपके साथ तबला संगत की है रामस्वरूप रतोनिया ने और हारमोनियम पर लहरा दिया है रामदास मुंगरी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन, राग था गौरख कल्याण। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया।

0: या कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।